आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी रहने वाली हूँ एडिसल, दो घंटे आपके साथ, 9 बजे तक मेरा शो होता है। और जो ये जो गाना हम सुन रहे थे उसमें बार बार पूछा जा रहा था कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, क्या हुआ है। मैं बताती हूँ, वीकेंड है भाई, क्या होगा, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, बस यही सब होना है। लेकिन आप जो है थोड़ी केयरफुल रहिए, अगर आप गाड़ी वाड़ी लेके निकले हैं कि हाँ भाई अब तो वीकेंड मनाएंगे अच्छे से, तो ध्यान रखिए स्पीड लिमिट्स वगैरह की, क्योंकि हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, फटाफट कहीं पहुँचने की जल्दी में होते हैं, तो इन सब का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कार या ट्रक का, या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट हो जाता है, तो मैं बता रही हूँ कि आपको किसको कांटेक्ट करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ना ऑल एग्रीवेट ना हो और आपको सोल्यूशन जल्दी मिले और फटाफट जो है आपको मेंटल स्ट्रेस और ये सब से रिलीफ मिले। एंड द पर्सन इज अटर्नी ओमर ख्वाजा, और वो आपका केस लड़ेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपका ड्यू कॉम्पनसेशन जो भी आप डिजर्व करते हैं उसको पाने में। और जो इंश्योरेंस कंपनी के जो जितने भी स्ट्रेस होते हैं ना वो भी यही लेंगे, इन्हीं की टेंशन हो जाएगी, आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको तब तक पे नहीं करना जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते। तो ये तो बहुत अमेजिंग है ना गाइज। अगर आपको फिर भी कोई फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो मैं आपको कॉल नंबर बता रही हूँ उनका, जहाँ आप कॉल कर सकते हैं, विच इज़ 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज़ attorneyomer.com।

देखिए डिनर का टाइम हो रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाए जहाँ पे कि अच्छा खाना मिले और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जाएं तो Page 3 Eatery इज डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. और मैं तो कल ही खा के आई हूँ, रक्षाबंधन स्पेशल हो रहा था वहाँ पे, काफ़ी टेस्टी है, वहाँ के जो चाट्स वगैरह हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर ट्राई करें. और ये ना डैलस का नया फेवरेट फ्लेवर हब बन चुका है एंड इंटरेस्टिंगली ये लोकेटेड है एट हब 121 पे Page 3 Eatery, जहां आपको मिलेगा बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मॉडर्न फ्लेवर के साथ. यहां आपको मिलता है कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स. और जो वाइब है उसकी तो बात ही मत कीजिए, पूरी वाइब्रेंट वाइब्स है. चाहे आप ब्रंच के लिए जा रहे हो, लंच के लिए जा रहे हो या फिर डिनर के लिए जा रहे हो, ये है परफेक्ट प्लेस फॉर फूडीज, फॉर डेट्स एंड फ्लेवर चीज़ लाइक मी. ओके, और अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानना हो, जैसे कि इनके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, मेन्यू क्या है, क्या क्या ऑप्शन में है, तो आप ज़रूर इनके वेबसाइट पे जाइए, विच इज़ Page 3 Eatery.com.

0: हाँ जी, हम आपसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, हम यारी के फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। और ये जो शो है, दिस इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, आपका कोई एक स्टार्टअप है या फिर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजे फिनटेक्स आपके लिए ऑफर करता है इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, जो कि टेलर किए जाते हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से, फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. ये सब कुछ available है at AJ FinTechs। और अगर आपको उनसे consultation लेना है, उनसे बातें करनी है, उनके services के बारे में और जानना है, तो आप उन्हें call कर सकते हैं at 4699429888 या फिर आप उनके website पे जाइए, which is AJFinTechs.com।
1: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com।

0: का AI powered platform real time rates compare करता है ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी हमारा साथ लंबा चलने वाला है, पूरे 3 घंटे का शो होता है मेरा। 9 बजे तक आपके साथ रहूंगी और बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती करनी अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ 7:37 हुए हैं स्टूडियो क्लॉक में, लेकिन इसके पहले कि मैं अपना गिव अवे राउंड शुरू करूं, आपसे सवाल पूछूं और एक इंटरेस्टिंग आपको प्राइज दूं, एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा और काफी एनर्जेटिक सा एक सॉन्ग आप सुन के वापस आइए, फिर मैं आपसे गिव अवे राउंड का जो है क्वेश्चन पूछूंगी।
1: म्यूजिक

मिलेगा मिलेगा आपको भी मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से गिव अवे। जी हाँ, अगर आपने सही जवाब दिया। लेकिन मैं बता रही हूँ कि फन पिज्जा किचन के गिव अवेज के लिए ना बहुत कॉल्स आते हैं और बनता भी है, क्योंकि इनका ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा जो है ना, ओ माई गॉड, दे आर सो टेस्टी, ब्रेथ टेकिंग टेस्टी आई वुड से। और ये सिर्फ पिज्जा नहीं है, ये फुल ऑन फ्लेवर फियास्ता है। और यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश फियास्ता वेजी से लेकर फायरी पोलो लोको, द सी फूड पैक्ड सनोर कैमरॉन, और हर बाइट बोल्ड है, एक्साइटिंग है, और बनाया गया है आपको यूं चुटकियों में, एक एक बाइट के साथ ऐसे इंप्रेस कर लेते हैं ये आपको। तो डू गो टू फन पिज्जा किचन और यहाँ पे इनके जो न्यू मेक्सिकन बोल्ड फ्लेवर्स हैं उनको इंजॉय कीजिए। और फिलहाल मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड। सवाल बहुत ईजी है, मैं आपको तीन स्टेटमेंट्स बताऊंगी और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, वो बचपन में आता था ना हम लोग को ऐसे सिलेबस में भी एग्जाम्स में, कि टू ट्रूज एंड वन फॉल्स, तो आपको वो वन फॉल्स बताना है मुझे। शुरू करते हैं। राजकुमार राव का सॉन्ग सुन रहे थे, उनका बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट जो है वीक में, 2 दिन बाद बस, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, राजकुमार राव ने अपना बॉलीवुड डेब्यू लव सेक्स और धोखा मूवी से स्टार्ट किया था। स्टेटमेंट नंबर टू, उन्होंने न्यूटन के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो है वो ये है कि उनकी पहली फिल्म काई पो चे थी। आपको कॉल करके बताना है, नंबर है 972-235-5555, और बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से जो है गलत स्टेटमेंट कौन सा है।

आज के हमारे विनर हमें मिल चुके हैं, इट्स अभिजीत जिन्होंने जीता है और बहुत लोगों ने जो है कॉल किया, आंसर दिए एंड सरप्राइजिंगली जो शुरू के आंसर्स मुझे मिले वो गलत मिल रहे थे एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि राजकुमार राव की जो पहली मूवी थी वो काई पोचे थी, विच वॉज नॉट द केस. उनकी पहली मूवी थी लव सेक्स और धोखा. तो इसलिए उस हिसाब से जो गलत स्टेटमेंट था इन माई लास्ट क्वेश्चन, दैट वॉज काई पोचे उनकी पहली मूवी थी. तो जो इसका सही जवाब दिया है वो अभिजीत ने दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिजीत, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. आप तो बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत अच्छा अच्छा पिज्जा खाने वाले हैं. लेकिन बाकी लोग, अगर आप जीत नहीं गए फिर भी अगर आप इन एंड अराउंड फ्रिस्को हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पिज्जा खाने का मन हो रहा है, तो जरूर जाएं फन पिज्जा किचन. बहुत अमेजिंग पिज्जाज होते हैं यहाँ के, आपको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए.

हम बात कर रहे थे राजकुमार राव के बारे में और उनका बर्थडे आ रहा है 2 दिन के बाद, और क्योंकि मेरा शो नहीं होता है 2 दिन के बाद, तो मैं जो है एक छोटा सा सेगमेंट उनको डेडिकेट कर देना चाहती हूँ आज ही। और उन्होंने ना ये प्रूव किया है कि स्टार बनने के लिए सिर्फ गुड लुक्स ही नहीं, गुड एक्टिंग भी चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस की सराहना की जाएगी, आपको लोग याद करेंगे आपकी मूवीज के लिए। और राजकुमार राव का नाम सुनते ही आपके माइंड में कौन सी मूवी आती है? वैसे आप ये सोचो, उनका नाम लिया तो क्या है आपके दिमाग में? इज इट स्त्री, न्यूटन, शाहिद, बरेली की बर्फी, बधाई दो, क्वीन, काई पोचे, बहुत सारी मूवी की है उन्होंने। और ये उन एक्टर्स में है से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री जो है किसी सुपरस्टार फैमिली से नहीं ली, ना ही कोई फिल्मी सरनेम है इनका, ना कोई गॉडफादर, बस टैलेंट, थिएटर ट्रेनिंग, स्ट्रगल्स और कंसिस्टेंसी। अगर आप उनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको उनकी जर्नी जो है काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी मोटिवेटिंग लगेगी, और शायद इसी वजह से वो काफ़ी रिलेटेबल लगते हैं हम सबको। और उनका एक गाना मुझे बेहद पसंद है, दिस इज़ मुस्कुराने की वजह तुम हो, इट्स फ्रॉम दी मूवी सिटी लाइट्स, और इनमें जो एक्ट्रेस है आज वो उनकी वाइफ है, सो डेफिनेटली इट्स अ स्पेशल वन आई गेस फॉर हिम टू।

अभी अभी मुझे अशोक जी का कॉल आया था और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था मुझे इश्क है तुझी से, बट समहाउ मैं वो गाना ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तो उसकी जगह पे ये ट्रैक बजा रही हूँ। आई होप यू लाइक इट अशोक जी, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे वो गाना फिलहाल नहीं मिल सका।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
4: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
7: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
3: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

बिल्कुल सही बात है, जीवन को इसी फिलॉसफी के साथ जीते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो रहा हो। और ये जो गाना था ना, वो सोनू निगम जी ने गाया है और इतना अच्छा गाया है, मैं तो एकदम आई एम बिग बिग टाइम फैन ऑफ सोनू निगम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली इस बात के लिए कि मैं अब उनको लाइव सुन सकूंगी। आपको तो पता ही होगा कि उनका जो शो है रिवोल्यूशन, वो डैलस आ रहा है। नहीं पता है तो मैंने अब बता दिए, टिकट्स अभी आप करा लो। तो ये जो शो है रिवोल्यूशन, ये हो रहा है सैटरडे को, सेप्टेम्बर 26th को, एट 8:30 PM एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन में। यहाँ सोनू निगम गाएंगे आपके फेवरेट सॉन्ग, सारी वो आइकॉनिक अमेजिंग सॉन्ग्स, और ये सब कुछ होगा लाइव बिल्कुल आपके सामने। टिकट्स अगर अभी तक आपने नहीं खरीदी हैं तो खरीद लीजिए, अवेलेबल है एट टिकट मास्टर। और अगर आपको इस पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता करना है कैसा है सब कुछ, तो आप कॉल कर सकते हैं 855-360, और यहाँ पे आपको शोज के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। रिवोल्यूशन गाइस, सोनू निगम लाइव होने वाले, और वी आर वेरी प्राउड, क्योंकि जो फन एशिया नेटवर्क है ना, उनका एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर बन चुका है। तो यस, दैट्स व्हाई वी आर डबल एक्साइटेड, एंड आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं लाइव, जैसा कि मैंने बताया। और सोनू निगम की बात हो और सिर्फ एक गाना हो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं चलता। उनके तो बहुत सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स है, और जो नेक्स्ट सॉन्ग है, अगेन आई वॉन्ट टू प्ले सोनू निगम अगेन, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट।

देखिए, फन एशिया के पहले प्यार तो आप ही हैं, यानी कि हमारे रेडियो के लिसनर्स, 104.9 एफएम के लिसनर्स. सो वी आर वेरी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर लिसनिंग टू अस. और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारे शोज पसंद आ रहे हैं, और मेरे यानी कि आरजे सिमी के भी शोज आपको पसंद आ रहे हैं. और अभी मैं आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ. अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या फिर जो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है आपके इंश्योरेंस के नेटवर्क में नहीं आता है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं जी. आप फिर भी कनेक्टेड हो सकते हो अफोर्डेबल प्राइमरी केयर के साथ विथ पैशन हेल्थ डायरेक्ट, जो कि इनका प्रोग्राम का नाम है, फॉर जस्ट $85 अ मंथ. ये मेंबरशिप है जो कि इंक्लूड करता है प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीजेज और मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ जब भी अप्रोप्रिएट हो, केयर कोऑर्डिनेशन भी अवेलेबल है, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. मतलब इतना कुछ अंडर वन मेंबरशिप, अंडर वन अम्ब्रेला. तो आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर से जरूर संपर्क करें. आप उनको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर है 214-666-6259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज passionhealthphysicians.com, क्योंकि पैशन हेल्थ का पैशन है आपका हेल्थ और आपकी जो है कम्युनिटी और उनकी केयर.

0: and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
5: Fikar not. We have the perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: बेटा, 95% आए?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ आरजे सिमी, ओनली ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम, पूरे 9 बजे तक हूँ भाई आपके साथ। और अभी वक्त हो गया है हमारे अनदर राउंड ऑफ गिव अवे का, तो तैयार हो जाइए। और ये गिव अवे है फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट, आपको मिल सकता है एक डोसा जो कि आपके चॉइस का होगा, प्लस 1 फिल्टर कॉफी मुफ्त। जो सैन इडली रेस्टोरेंट है ना, वो 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ का जो सारा खाना है वो फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर फील देता है, चाहे वो क्रिस्पी डोसा हो, फ्लपी इडलीज हो, आपको सारे जो साउथ इंडियन फेवरेट्स है ना, आपके सबका बेस्ट क्यूजीन, बेस्ट रेसिपी इनके पास ही है ऐसा समझ लीजिए। और शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी भी यहीं मिलती है। तो अगर आपको फैमिली डिनर करना हो या फिर केटरिंग सर्विसेज के लिए किसी को जो है रीच आउट करना है, देन इट इज सैन इडली गाइस। आपको यहाँ पे जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, तो सबके लिए हो गया ना, फिर आप जरूर जाएं सैन इडली रेस्टोरेंट। ये लोकेटेड है एट हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन में। और एक और धमाकेदार न्यूज कि ये जो नेक्स्ट गिव अवे मैं खेलने जा रही हूं, उसके लिए एक नहीं दो विनर चूज किए जाएंगे, यानी कि आपके जीतने के चांसेस डबल डबल डबल। और गेम के रूल्स ये हैं कि मैं आपको आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी मूवी रिलेटेड, एंड आपको बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि गलत है, यानी 2 ट्रूस एंड 1 फॉल्स है, और आपको मुझे बताना है कि गलत स्टेटमेंट क्या है। और मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए जा रही हूँ, तो तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सब कुछ जो स्टेटमेंट्स है वो मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से रिलेटेड है, तो जिन्होंने देखी ऑफकोर्स उनको फायदा होने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर एंड अभय देओल जो है, तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एज मूवी कैरेक्टर्स, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है कि कैटरीना कैफ ने लैला नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि फिल्म का मेजर पोर्शन स्विट्जरलैंड में शूट हुआ था। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। नंबर है 9722355555 and I'm gonna select 2 winners guys, तो आपकी चांसेस हैं, प्लीज कॉल।

हमारे दोनों विनर्स हमें मिल चुके हैं। हमने आपको दिए थे 3 स्टेटमेंट्स और पूछा था आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और ये जो तीनों स्टेटमेंट्स थे वो रिलेटेड थे फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। स्टेटमेंट फर्स्ट था कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जो कि सही है। नंबर 2 है स्टेटमेंट कि कैटरीना कैफ ने लैला नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था, जो बिल्कुल सही है। तो ऑटोमेटिकली जो 3rd स्टेटमेंट है वो गलत था, और वो आज का सही आंसर था कि फिल्म का मेजर पोर्शन स्विट्जरलैंड में शूट हुआ था। नहीं, फिल्म का मेजर पोर्शन जो है स्पेन में शूट हुआ था, और बहुत लोग ऐसे एक्साइटेड होके अपने दोस्तों के साथ स्पेन चले गए थे एकदम एंजॉय करने के लिए। तो यार डेफिनेटली आई वुड से कि वो चीज़ पर्टिकुलरली तो लोगों को याद रही गई, स्पेशली फ्रॉम दी सॉन्ग सेनोरिटा एंड एवरीथिंग। तो आज के विनर्स जो है वो अनाउंस कर दूं भाई। आज के हमारे विनर्स हैं विजय एंड वानी। आई थिंक इट्स द डे फॉर द लेटर वी। कांग्रेचुलेशंस गाइज। एंड विजय, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल कि आप मुझे कॉल करके अपने डिटेल्स दे दे, तो प्लीज कॉल मी बैक। और सैन इडली रेस्टोरेंट्स की तरफ से मिला है आपको ये फ्री डोसा, जो कि आपकी चॉइस का होगा, प्लस फिल्टर कॉफी, डबल धमाका फॉर आवर डबल विनर्स फॉर द डे। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन गाइज, एंड थैंक यू एवरीवन हु प्लेड, और सबने सही जवाब दिया है। आई एम सो ग्लैड। Thank you guys.

0: भाई इस गुलाबों के तो जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ परफेक्ट टाइम के बारे में। हम अक्सर कहते हैं कि जब टाइम सही होगा तब ये चीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन शायद लाइफ में परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कभी पैसे कम होंगे, कभी कॉन्फिडेंस। तो आज का थॉट ये है कि परफेक्ट मोमेंट्स का वेट मत कीजिए, जो मोमेंट मिला है उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, यानी कि फ्रॉम आरजे सिमी, और आपसे मुलाकात होगी कल भी 6 बजे शाम को। तो स्टे ट्यून्ड विद फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। तो गुड नाइट गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग योर वीकेंड, टेक केयर।
1: Wanna natural night? Do you feel alright? Wanna natural night?

0: Legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors. New obsession.
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
5: Wow, wow, wow.

ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार, ताली चलते

0: उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
1: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Funasia
2: Hi I am Shah Rukh Khan You are listening to Funasia
3: चहरा

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: हाय नी तेरा सूट भी हाय नी तेरी साड़ी भी हाय नी तेरा लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइन

रास ना आया तैनू नी जो दिल दा महल बनाया सी तोड़ के मोती फुलां दे उस महल च बूटा लाया सी नी जिवें सानू छड्ड गईयां नी तू अलड़े जदों तैनू कोई

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Kunal Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: Your favorite music on your favorite radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: पटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, पटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे। बाय गॉड।

5.5 गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुकी थी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: So, ruko jara, sabar karo.
4: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Phoneshia.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lights, Mike, Bollywood, Funasia!
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत. अ वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप, आपका स्वागत करती हूं. ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, और इस खूबसूरत शो को बस यही सब चीज़ें हैं जो खूबसूरत बना देती हैं. आपका साथ, ये मौसम, ये महफिल, ये समा, और बस आपका साथ हो तो बस जो है दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. आज की डेट है अगस्त 30th, आखिरी फिफ्थ एंड लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ. पांच संडेज अगस्त के महीने में. टुडे इज़ द फिफ्थ संडे विच इज़ अगस्त 30th. Tomorrow would be the last day of this 8th month in the year 2026. Iske baad, is saal ke liye to August ko hum bye-bye bol rahe hain. September ka mahina hoga agli baar jab main aapse agle Sunday ko milungi yahan par. Aur bas jo hai mausam mein tabdili bhi aa rahi hai. Jaise jaise mahine aage badhte hain, वैसे वैसे हम सीज़न में चेंजेस भी देखते हैं. वेरी सून वो भी इन द फॉल सीज़न. लेकिन जो हैं गाने यहाँ पर जो होते हैं बहुत ही अच्छे सदाबहार, जो हैं सीजनल सॉन्ग्स नहीं होते, एवरग्रीन सदाबहार सॉन्ग्स होते हैं. सो कीप द कॉल्स कमिंग इन. आई एम इन द स्टूडियो फ्रॉम 7 to 10 AM. दिस इज़ आरजे एकरूप वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन. टुडे इज़ अगस्त 30th एंड स्वागत है आप सबका इस शो पर जो आता है 3 घंटे लेकर आती हूँ इसको मैं, यानी कि आरजे एकरूप. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. तो आप बस मुझे कॉल करके बताइए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. शो का आगाज़ करते हैं इस सॉन्ग के साथ.

मुस्कान वो चाबी है जो हर दिल को खोल देती है, तो बस आप मुस्कुराते रहिए और सब जो है आपके आसपास जो लोग हैं उनके दिलों की जो है वो अपने आप दिल उनके खुलते रहेंगे एंड आपका जो मैजिक है वो बस जो है फैलता ही रहेगा, स्प्रेड होता रहेगा राइट अक्रॉस अराउंड द पीपल दैट यू आर विद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सबको सलाम। एंड 7 से 10 ये शो आता है आज, जुलाई, August 30th। फ़ोन कॉल्स आप सबके आने भी लग गए हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन। 972-235-5555 है हमारे इस स्टूडियो का फ़ोन नंबर, 104.9 FM फनीशर रेडियो की फ्रीक्वेंसी। हम होते हैं आपके साथ, आपकी कार्स में, आपके घर में, आपके किचन में, आपके जहां पर भी आप काम कर रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव द रेडियो टर्नड ऑन देन वी आर अकम्पनिंग यू विद सम नाइस सॉन्ग्स ऑफ योर चॉइस। सो इफ़ यू हैवन कॉल्ड इन या सोच रहे हैं कि क्या कॉल करूं या ना करूं, तो डेफिनेटली स्टूडियो का फोन नंबर, लाइंस आर ओपन। दिस इज़ आरजे एकरूप। आज जो है वो हफ्ते में एक बार मेरी आपसे मुलाकात होती है, संडे इज़ द डे एंड टुडे इज़ द संडे। ये वाला जो सॉन्ग है अब जो मैं लगाऊंगी वो है आज के शो का सबसे पहला रिक्वेस्टेड सॉन्ग, सो हियर यू गो। थोड़ा लंबा सॉन्ग है, मैं पूरा तो नहीं प्ले करूंगी, लेकिन जो है इस सॉन्ग को हम जितना सुने उतना ही ऐसे लगता है कि अभी दिल भरा नहीं है, अभी और सुनना है। जी हाँ, दीज आर नॉट द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग, वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये ज़बरदस्त, लाइक आई सेड, एवरग्रीन, सदाबहार सॉन्ग्स यहाँ पर प्ले होते हैं, तो ये वाला

0: इतना सुंदर सॉन्ग है, फिल्म का नाम गाइड, और वहीदा रहमान जी, ऑफ कोर्स शी लुक्स इटर्नली ब्यूटीफुल, और लता जी की आवाज़, ये फिल्म ने इतना मैजिक किया था। एंड इसका मैजिक आई डोंट नो, इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जो इस फिल्म का मैजिक था, इस फिल्म का जो की जो पावर थी। और देवानंद साहब ने इसको इतने प्यार से इसमें काम किया था, एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर ऑल्सो बिहाइंड द सीन्स। वहीदा जी के बिसाइड्स आई डोंट थिंक, वेल आई डोंट नो अगर ये फिल्म किसी और एक्ट्रेस को ऑफर हुई थी या नहीं, लेकिन जैसा इन्होंने काम किया था, शी इज़ irreplaceable. We cannot think guide with any other actress besides Vahida ji. So ye bahut hi magical combination collaboration hui thi, and that made this I guess ageless film called Guide. वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं है, वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं है, खास लोगों के लिए वक्त होना ज़रूरी है। तो बस अपनों के लिए टाइम निकालें, आदर और थोड़ा समय, यही है दुनिया में जीवन में सबसे बड़ी दौलत जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, और यही है जो रिश्तों में ज़रूरी भी है। हमारे एक लिसनर हैं जो इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। एंड ये 3 मिनट्स का सॉन्ग है, ब्रेक पर भी जाने के लिए 3 मिनट्स हैं, सो दिस सॉन्ग विल टेक अस इनटू द ब्रेक एंड देन आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द कमर्शियल ब्रेक अराउंड 7:35। ये लीजिए आपके लिए ये वाला तलत महमूद साहब की आवाज़ में बिरादरी फिल्म का ये सॉन्ग।
1: तस्वीर

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: We need to talk.
4: अब क्या हुआ?
3: Nothing. It's not you.
4: Oh no.
3: It's the distance.
4: Distance? We live 10 minutes apart.
3: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
5: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: फ्लोर्स क्लीन
10: चेक,
3: विंडोज क्लीन
10: चेक,
3: किचन क्लीन
10: चेक,
3: एयर डक्ट्स क्लीन।
10: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
11: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
12: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
17: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
18: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
19: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
18: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज, और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
19: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
17: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।

वेलकम बैक, स्वागत है आपका. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद. आप सब इस शो के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ भी ऑब्वियसली इस शो के जरिए माध्यम से ही जुड़े हुए हैं. और यहाँ का जो फ़ोन नंबर है 972-235-5555 एंड मैं हूँ आरजे एक रूप. आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से. फर्स्ट ब्रेक के बाद अभी हम वापस आ रहे हैं. 10 o'clock तक के शो होगा. August 30th इज़ द डेट. आखिरी संडे है इस महीने का एंड देन टू डेज लेटर, वेल नॉट टुमारो बट द डे आफ्टर, सितंबर शुरू हो जाएगा. ओमर ख्वाजा हैं जो इस शो को स्पॉन्सर करते हैं एंड ही इज़ अ पर्सनल इंजरी अटॉर्नी हियर इन टाउन. अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिज़र्व. इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर राइट नॉलेज एंड राइट टर्मिनोलॉजी, राइट वर्बेज ना पता हो, तो फिर ईजिली आप कहीं और यू नो इंटेंगल हो सकते हैं कॉन्वर्सेशंस में, डिस्कशंस में या फिर केस में. सो बेटर टू गिव इट आउट टू समबडी दैट इज़ एन एक्सपर्ट एंड विल वर्क इन योर फेवर. सो अटॉर्नी ओमर ख्वाजा इज़ द पर्सन. इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद हिम, 469-350-4646 इज़ द फ़ोन नंबर. attorneyomar.com is his website. और आपको वो फ्री कंसल्टेशन देंगे, आपको उनको कुछ पे नहीं करना until you win the case. So this is attorney Omar Khwaja. God forbid if you are involved in such a thing where personal injury is involved, then you have a name that you can rely on and that is attorney Omar Khwaja. और उनका फ़ोन नंबर 469-350-4646. हमारी एक लिसनर है, वो कहती हैं ये वाला सॉन्ग टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म ये वादा रहा. आशा जी एंड किशोरदा की आवाज़ें, आर डी बर्मन का म्यूजिक.

वादा करो तो पूरा करो, इरादा करो तो उसको भी पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो। ये मूवी इतनी अच्छी थी, इट वॉज बेस्ड ऑन अ नावल, वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स, उन्होंने ये नावल लिखी थी। एंड ये फिल्म जब बॉलीवुड में आई तो ये इतना अच्छा इसका प्रोडक्ट बना दैट पीपल लव्ड द फिल्म। 1982 में आई थी ये फिल्म, और उस टाइम के इतने टॉप के एक्टर्स ऋषि कपूर, टीना मुनीम एंड पूनम ढिलन की फिल्म थी ये। इसमें और भी बहुत अच्छे जाने माने एक्टर्स थे, एंड बट बाय द टाइम दिस मूवी केम, दोज येस्टर ईयर एक्टर्स वर प्लेइंग द रोल्स ऑफ ओल्डर मेंबर्स इन अ फैमिली, सच एज शमी कपूर साहब थे इस फिल्म में, राखी गुलजार भी थी, राकेश बेदी, तो खैर चलिए अभी तक भी उनका काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, एंड इफ्तिखार जो कि मोस्टली पुलिस ऑफिसर के रोल में नज़र आते थे। सो दिस फिल्म वॉज अ सुपरहिट फिल्म बेस्ड ऑन अ नावल रिटन बाय डैनियल स्टील, द प्रॉमिस। और बस ये जब हिंदी फिल्म में हमने इस नावल को देखा, पढ़ा, देखा एक्चुअली इन अ म्यूजिकल सेंस विद ऑल दीज नाइस सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन, तो लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। हमारा अगला जो सॉन्ग है वो आई थिंक राम बताया उन्होंने अपना नाम, राम बताया उन्होंने अपना नाम। तो ये वाला सॉन्ग है, फिल्म का नाम सागर, अनदर सुपरहिट फिल्म, ऋषि कपूर साहब की ही फिल्म, कम बैक कह सकते हैं शायद इस फिल्म को डिम्पल कपाडिया जी के लिए, एंड ये भी किशोरदा की आवाज़ में।

इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वाला सॉन्ग एक सो एंड सो इंग्लिश सॉन्ग से या किसी और लैंग्वेज की सॉन्ग से इस म्यूज़िक कंपोज़र ने इंस्पिरेशन ली एंड देन उन्होंने ये एक हिंदी वाला सुपरहिट सॉन्ग बना दिया. ये जो हम सॉन्ग सुन रहे थे सागर किनारे, दिस वॉज एक्चुअली यूज फ्रॉम अनदर फिल्म दैट केम आउट बिफोर दिस वन. सागर आई थी 1985 में और एक फिल्म आई थी 1981 में जिसमें आर डी बर्मन साहब का ही म्यूज़िक था, और उन्होंने उस मूवी नरम गरम का एक सॉन्ग था जिसकी सेम कॉम्पोजिशन उन्होंने इस वाले सॉन्ग में यूज़ की थी सागर किनारे. सो आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग एंड आप देखिए कितनी सिमिलरिटी है. ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स द सेम ट्यून, सेम कॉम्पोजिशन. फिल्म का नाम सागर किनारे. सो आर डी बर्मन ने अपने ही इस सॉन्ग को रीयूज़ किया था सागर फिल्म के लिए. सो ये जो मैं अभी प्ले करने वाली हूँ ये आर डी बर्मन का ही म्यूज़िक है. फिल्म का नाम है नरम गरम, दैट केम आउट इन 1981 एंड इट्स ऑन द सेम ट्यून्स ऑफ सागर किनारे.

तो ये सबसे पहले सॉन्ग आया था 1981 में, फिल्म का नाम नरम गरम। इसको भी ऑफ कोर्स आर डी बर्मन साहब ने ही कंपोज किया था, एंड देन लेटर ऑन ही यूज द सेम कंपोजिशन इन द फिल्म कॉल्ड सागर, और गाने के बोल थे सागर किनारे दिल ये पुकारे। सो ये फिल्म नरम गरम, जिसको ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, व्हाट अ वंडरफुल डायरेक्टर, व्हाट अ अमेजिंग फिनोमिनल वर्क ही इज़ डन इन द इंडस्ट्री। एंड ये इस फिल्म में स्वरूप संपत एंड अमोल पालेकर और साथ में उनके शत्रुघ्न सिन्हा। स्वरूप संपत एक्चुअली मिस इंडिया रह चुकी हैं, शी वन द टाइटल इन 1979, और फिर उसके बाद उन्होंने एक्टिंग मॉडलिंग को छोड़ के देन एक्टिंग की तरफ उन्होंने अपना जो है डायरेक्शन ले ली। 1987 शी गॉट मैरिड टू पारेश रावल, जो कि ही इज़ सो वर्सटाइल, ही इज़ सो टैलेंटेड, ही इज़ जस्ट सो फिनोमिनल। उनको जिस रोल में डाल दो वो वैसे ही हो जाते हैं, रोल एक्चुअली उनके टाइप का हो जाता है। सो शी इज़ मैरिड टू पारेश रावल। बट एनी वे, देखो बातों में से बातें निकल गई। एक सॉन्ग हमारे राम जो है लिसनर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, देन आई नोटिस्ड कि ये वाला भी एक और सॉन्ग है जो सेम ट्यून में है, तो आई थॉट मैं आपके लिए वो प्ले कर देती हूँ। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक और हमारे एडवर्टाइजर के बारे में बता देती हूँ। एजी फिनटेक्स ब्रिंग्स टू यू दिस शो, एंड ही हैज़ बिन अ स्पॉन्सर ऑफ दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड वो हमारी कम्युनिटी के एक बहुत जाने माने टैक्स फॉर्म है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फॉर्म्स इन द US, दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट, एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं 469-942-9888, या फिर आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, विच इज़ agfintechs.com।

0: इतना डिस्टिंक्ट इनका स्टाइल, विनोद खन्ना. आई बी राइट बैक.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
8: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Tamarind, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं ही तो इन
6: हूं। साथिया,
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रहे हैं एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

एक हमारे लिसनर हैं, अगर मैं मुकेश साहब का कोई भी गीत अगर थोड़ा सा भी उसको पहले लेट शुरू करूं या पहले बंद कर दूं ना, तो फिर उनका मुझे फटाफट से फ़ोन आ जाता है कि आज आपने ऐसा किया मुकेश साहब के लिए. तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी मुकेश साहब की आवाज़ का कोई भी सॉन्ग प्ले करती हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि मैं उस गाने को पूरा पूरा प्ले करूँ. एक भी उनका जो आवाज़ का जो लफ्ज़ है वो जो है अधूरा ना रह जाए. वैसे वो शायद हमारे लिसनर कॉल नहीं करते, लेकिन अगर मेरे से ऐसे गुस्ताखी हो जाए तो वो राइट अवे कॉल कर देते हैं. एंड दिस हैज़ हैपेंड नॉट वंस ट्वाइस, अ फ्यू अदर टाइम्स एज वेल. कई बार टाइम का क्रंच होता है या एड आ जाती है या समथिंग यू नो हैपन्स एंड देन तो ऐसी गलती हो जाती है. बट दिस वॉज संग बाय मुकेश साहब एंड फिल्म का नाम धर्म करम. वाह, आज कितने राइमिंग वाले आ रहे हैं. थोड़ी देर पहले नरम करम था, अभी धर्म करम. आई थिंक यही है नाम इस फिल्म का, राज कपूर साहब की फिल्म दैट केम आउट इन 1975. सो वेलकम आप सबका. घड़ी में 8:10 हो रहे हैं, ब्रेक 8:05 के बाद हम रिज्यूम करते हैं. एंड देन वेलकम वंस अगेन, दिस इज़ आरजे एकरूप और शो पेश कर रही हूँ संडे गपशप. हमारे लिसनर जो बैक टू बैक दो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी आ चुकी है रिक्वेस्ट. एंड अब जो मैं दो सॉन्ग्स प्ले करूँगी वो उन्हीं की रिक्वेस्ट के होंगे. एंड बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ लिटल, वो इज़ अ रेट्रो सॉन्ग. फिल्म का नाम है चा चा चा. और दूसरा सॉन्ग है फिल्म का नाम बहारों के सपने. सो ये मैं दोनों प्ले करती हूँ राइट नाउ.

आगे चलकर जिनको एक टाइटल मिल गया कैबरे क्वीन हेलेन जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द मूवी इंडस्ट्री, वो ही इस फिल्म में, ये उनकी फिल्म चाचा चा जो कि इनिशियल फिल्मों में से एक फिल्म, एंड इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं. शी इज़ नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ अ डांसर, लेकिन जो है सीन्स में नज़र आ रही हैं. शी इज़ सिटिंग ऑन अ समथिंग बेड और अ कैच एंड लिसनिंग टू द रेडियो, और जहाँ पर ये सॉन्ग जो है प्ले हो रहा है. सो फिल्म का नाम चाचा चा. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन जो हमारे सेम लिसनर ने रिक्वेस्ट किया वो है ये वाला.

ये फिल्म जब बन रही थी, सोच रहे थे इस फिल्म में किसको लेंगे, कौन सी एक्ट्रेस होगी, तो उन दिनों जो है सभी बहुत अच्छा काम कर रही थी. मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस दैट वर इन द फिल्म्स बैक देन वर यूनिक एंड दे हैड अ बिग नेम फॉर देमसेल्व्स इन द इंडस्ट्री. तो जो है नासिर हुसैन साहब ने सोचा कि नंदा जी को लेते हैं, लेकिन नंदा जी को लगा कि ये जो रोल है इतना ग्लैमरस नहीं है, इतना उनके डिज़ायर का नहीं है, उनकी चॉइस का नहीं है, तो फिर उन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया. एंड क्योंकि नासिर हुसैन साहब ऑलरेडी आशा पारेख जी के साथ काम कर चुके थे एंड दे हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, तो उन्होंने आशा पारेख जी को साइन कर लिया इस मूवी के लिए, जिसका नाम बहारों के सपने. आर डी बर्मन का कमाल का म्यूजिक एंड इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब भी थे. जब तक आराधना नहीं आई थी तो लोगों को इतना मालूम नहीं था राजेश खन्ना के बारे में. इट वॉज ओनली अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर आफ्टर दिस फिल्म दैट वेन आराधना केम एंड जो है ओवरनाइट सुपरस्टार सेंसेशन बन गए थे राजेश खन्ना साहब. सो ये फिल्म टोटली जो है आशा पारेख जी, क्योंकि ऑलरेडी उनका नाम बहुत था इंडस्ट्री में, तो दिस वॉज कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस मूवी में ओवरशैडो कर दिया या सरपास कर दिया बाकी और एक्टर्स को. म्यूजिक वाज वंडरफुल, लता जी की आवाज़, एंड इस फिल्म के इनफैक्ट सभी गाने बहुत अच्छे हैं. आजा पिया तोहे प्यार दूं, दो पल जो तेरी आँखों से, एंड देन ऑफ कोर्स ये वाला तो हम सुन ही रहे हैं. सो बहुत अच्छे सॉन्ग थे इस फिल्म के, सारे ही सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे. अब जो है ब्रेक पे जाने से पहले ये वाला सॉन्ग हमारे एक लिसनर चाहते हैं. बोल, ब्रेक पे तो अभी काफ़ी टाइम है. दिस इज़ अ शॉर्ट सॉन्ग, लेस दैन 4 मिनट्स. बहुत अच्छा सॉन्ग है, हिमालय की गोद में.

0: एक और सॉन्ग ऑन सिमिलर लाइंस है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है. आई एम लुकिंग एट द क्लॉक, इट्स ऑलमोस्ट वेल यू नो व्हाट, 2 मिनट का सॉन्ग प्ले करने का कोई फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है. इट हैज़ अ वेरी नाइस म्यूज़िक. फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, अगेन शॉट इन द माउंटेन्स, और बहुत ही सुंदर जो है इसमें नेचर दिखाई है, जस्ट लाइक हिमालय की गोद में जो हम सॉन्ग अभी सुन रहे थे. पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, सुंदर से बादल हैं, और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है. सो आई थिंक इट विल बी अ वेस्ट इफ़ आई प्ले इट नाउ एंड नॉट आफ्टर द ब्रेक. और अनजस्ट भी होगा, जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है तो फिर उनको भी पूरा ये सॉन्ग सुनने को नहीं मिलेगा. तो ऐसा करती हूँ कि फिर मैं ये वाला सॉन्ग ब्रेक के बाद ही प्ले करूँगी, अदरवाइज़ आई वॉज थिंकिंग कि मैं फटाफट 2 मिनट का प्ले कर देती हूँ, बट वो जो है अच्छा नहीं होगा. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में आपको बता देती हूँ कि अगर आप के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप आउट ऑफ नेटवर्क हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर सर्विसेज से, तो कोई बात नहीं, आप जो है इनकी अफोर्डेबल प्राइमरी केयर आप ले सकते हैं $85 अ मंथ. एंड इनकी जो मेंबरशिप है, जो आपका इंश्योरेंस पैकेज है, वो इंक्लूड करेगा आपकी प्राइमरी केयर विजिट्स, follow up and preventive care, chronic disease and medication management, telehealth when appropriate, when it's needed, and जो है आप अपना coordinate कर सकते हैं. आपको जब भी कोई सवाल हो, कोई care की ज़रूरत हो, तो आपको ये ज़रूर आपके साथ contact बनाएंगे. 20% savings भी आप कर सकते हैं if you are eligible self-paying labs जो हैं imaging and diagnostic services के लिए. So primary passionhealthphysicians.com is the website. passionhealthphysicians.com is the website. इनका फ़ोन नंबर है 214-666-6259. Passion Health, their passion, your health and our community. I will be right back after this short commercial break.
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
3: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
6: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
13: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
12: Fear not. We have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. What would happen to your business if a key owner, partner or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult
15: qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
16: पूछे देखा तो ये जाना सनम.
17: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Sanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

अच्छे लोग हो, अच्छा टैलेंट हो, बहुत टैलेंटेड टीम हो, बहुत प्रोफेशनली ज़बरदस्त लोग हो, तो काम करने का बड़ा मज़ा ही अलग होता है. एंड आई एम श्योर जब ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बन जब ऐसी फिल्में बनती होंगी और इतना अच्छा इनका रिजल्ट निकलता होगा, बिकॉज़ ऑन द सेट्स इट वुड बी सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क टुगेदर. और वैसे ही जब हम बात करते हैं कि गोल्डन एरा की फिल्में या जो पुरानी फिल्में हैं, पुराना तो चलिए हम बोल देते हैं कि आजकल की नहीं है, अदरवाइज़ पुराना तो कुछ भी नहीं है. टैलेंट इज़ नेवर ओल्ड, टैलेंट इज़ ऑलवेज एवरग्रीन एंड एजलेस. तो जब ऐसी फिल्में बनती होंगी तो देखने में, बनने के बाद एज एन ऑडियंस हमें देखने में इतना अच्छा लगता है, सुनने में ये सॉन्ग्स इतने अच्छे लगते हैं. एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि जब इनकी फिल्मों की शूटिंग चलती होगी, ये लोग इतने अच्छे एक्टर्स, इतना कमाल का टैलेंट, ये सेट्स पे कितना एंजॉय करते होंगे, कितना अच्छा इनको एक दूसरे से सीखने को मिलता होगा. दिस फिल्म पत्थर के सनम 1967 में आई थी और इसमें एक से बढ़कर एक एक्टर्स, मनोज कुमार साहब, वहीदा जी, मुमताज, प्राण, महमूद, ललिता पवार और अरुणा ईरानी सभी इस फिल्म का हिस्सा बने थे. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक एंड दिस वन लता जी की आवाज़, और क्या म्यूज़िक, क्या मेलोडी, और इतनी सुंदर ब्यूटीफुल लोकेशंस जिनमें ऐसी फिल्में बनती थी. तो देर इज़ सम मैजिक इन दीज फिल्म्स एंड दैट इज़ वाई वी ऑल ऑफ अस लव टू लिसन टू दीज सॉन्ग्स. अगला जो सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, ये भी कह सकते हैं एक इतना क्लासिक सॉन्ग है. मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है और एक्टर्स तो इसमें है मीना कुमारी एंड उनके साथ राजकुमार साहब.

ये इतनी आइकॉनिक पेयरिंग थी इन दोनों की, देवानंद साहब एंड वहीदा जी की. और इन्होंने चार फिल्मों में इकट्ठे काम किया था, 1956 से लेके 1965 में. एंड देयर मोस्ट सेलिब्रेटेड कोलैबोरेशन वाज डेफिनेटली दिस फिल्म कॉल्ड वेल, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में थी इनकी, तो प्रेम पुजारी भी थी इनकी. दिस वन जो गाइड फिल्म थी वो इनका सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड, इनकी जो एक मास्टरपीस कोलैबोरेशन थी, दैट केम आउट इन 1965. दिस पेयरिंग ऑफ कोर्स हैड अ लॉट ऑफ चार्म अमंग द ऑडियंसेस, और ये जब भी नज़र आते थे तो फिर काफ़ी जादू हो जाया करता था. CID 1956 से इनका सफ़र इकट्ठे शुरू हुआ था एंड देन वेंट ऑन फॉर सेवरल ईयर्स. और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया जिसमें रोमांस भी था, कॉमेडी भी थी, क्लासिक जिसको कहते हैं कि स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग और थ्रिलर, ये सारे जो हैं जॉनरास इन्होंने इस पेयर ने अपनी फिल्मों में टच अपॉन किया था, दिखाया था. सो ज़बरदस्त इनकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी दोनों की ही, और बहुत स्टाइलिश एक्टर्स, और इनका जो है जो ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री वॉज मैजिकल. 1965 की ये फिल्म गाइड जिसका हम सॉन्ग सुन रहे थे, मूविंग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं 20 इयर्स लेटर जब ये वाली फिल्म आई, हैज़ नथिंग टू डू विद देव साहब और वहीदा जी, लेकिन इस फिल्म का सॉन्ग पहले भी प्ले हो चुका है. अब इसकी रिक्वेस्ट एक इस फिल्म के सॉन्ग की ये दूसरी वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है. फिल्म का नाम सागर और ये वाला सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई है.

अगस्त में बहुत सारे बर्थडेज आते हैं सेलिब्रिटीज़ के, एंड जो है अगस्त इज़ आल्सो वन ऑफ द सॉलम सैड मंथ्स, क्योंकि जब इतने कोई सिंगर हों जो दुनिया पे छाए हों, सब ऑडियंस के दिलों पर छाए हों, वो जब गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर जो है वो दिन हमेशा फैंस के लिए वो एक याद बन के रह जाती है. अगस्त 27th इज़ द डेट इन 1976 व्हेन मुकेश साहब लॉस्ट हिज लाइफ एंड ही पास्ड अवे इन डिट्रॉयट मिशिगन में उनकी डेथ हुई थी. एंड हमारे जो हैं जो मूवी लवर्स और हम इस शो के कई जो लिसनर्स हैं वो याद करते हैं हमेशा, और कहते हैं कि अगस्त 27th एक ऐसी इनडेलिबल डेट है उनके माइंड में जो वो कभी भी भूल नहीं सकते. सो मुकेश साहब की आवाज़ में ये वाला सॉन्ग, जिसको कह सकते हैं कि एक एवरग्रीन सॉन्ग रहा है. राज कपूर साहब के करियर में, इस फिल्म के करियर में, एंड बॉलीवुड हिंदी फिल्म के लाइफ स्पैन में ये वाला जो सॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का सॉन्ग.

0: Remembering Mukesh, the great singer Mukesh Sahab died on August 27th in 1976 in Detroit, Michigan while performing at a concert.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: दैट्स फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार। फैमिलियर इंडियन फ्लेवर्स विद अ फ्यूजन ट्विस्ट। ऑलरेडी लव्ड इन रिचर्डसन, नाउ द फ्लेवर स्टोरी मूव्स टू अर्विंग। एंजॉय एन एवरीडे लंच बफे विद 25 आइटम्स, चाट्स, तंदूर, बिरयानी, फ्यूजन फेवरेट्स एंड प्लेंटी मोर टू डिस्कवर। फ्यूजन रिपब्लिक नाउ एट 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
20: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

बर्थडेज की समहाउ बात शुरू हो गई तो डेफिनेटली दिस पर्सनालिटी, दिस सिंगर, दिस फिलैंथ्रोपिस्ट, सॉन्ग राइटर, सिंगर, डांसर, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, बॉर्न ऑन अगस्त 29th in 1958. इनका भी जन्मदिन इसी महीने आता है, कल ही था इनका जन्मदिन. एंड इनकी रेप्यू इनका जो है करियर जब शुरू हुआ माइकल जैक्सन का, तो ही वॉज़ क्वाइट यंग. एंड देन ये और इनके सिबलिंग्स ने गाना शुरू किया था. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ऑल बिकेम सो पॉपुलर. ओवर टाइम कहीं ना कहीं इनकी रेपुटेशन जो है पोलराइज हो गई. डाउनफॉल भी आया माइकल जैक्सन के करियर का. लेकिन जब तक गुड टाइम्स थे, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम हो रहा था, अंटो ही गॉट इनटू सम स्कैंडल्स एंड सम कंट्रोवर्सीज, नॉट सम क्वाइट. तो उस चैप्टर को, उस नेगेटिव पार्ट को नहीं टच करेंगे, बट लुकिंग एट हिज पॉपुलैरिटी फॉर हिज टैलेंट विच वाज सॉन्ग राइटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ फिलैंथ्रोपी ऑल्सो. तो इन्होंने अपने लिए काफ़ी नाम बनाया. माइकल जैक्सन बॉर्न ऑन अगस्त 29th 1958. एंड ये वाला सॉन्ग इन्होंने जो इसके इसके लिरिक्स, हील द वर्ल्ड.

Known as the king of pop, he is widely regarded as one of the most culturally significant figures in this century, in this day and age and time. और ये कब से पॉपुलर हैं, बैक इन द 80s 90s, और इवन अभी भी जो न्यू जनरेशन आ रही है, दे नो अबाउट हिम सो वेल. फिल्म, अभी मूवी भी आई है इनके नाम की, एंड दैट इज़ हाउ वाइड स्प्रेड हिज पॉपुलरिटी हैज़ बिन. और इनके जो मून वॉक, जो डांस इनका रहा है, मून वॉक हो गया, वो कितना पॉपुलर, एंड सो मेनी जनरेशन ऑफ डांसर्स हैव, वेल आई वुडंट से सो मेनी जनरेशंस, बट आई वुड डेफिनेटली से सो मेनी डांसर्स हैव इमिटेटेड एंड अडॉप्टेड हिज स्टाइल ऑफ डांसिंग. सो माइकल जैक्सन, आई वुड से दैट ही इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग artist, and that has a very long life. He has left behind some legacy, and the good, bad, and the ugly. But we will only think of the good things that he has done and produced in terms of music.

0: So happy belated birthday, Michael Jackson. Of course, he's not with us anymore. इनकी डेथ हो गई थी बहुत साल पहले. एंड लेकिन 29th ऑफ ऑगस्ट इज़ द डे दैट ही वॉज बॉर्न. ही डाइड इन 2009, लेफ्ट वाइड स्प्रेड लेगेसी, मैसिव फैनफेयर एंड लॉट्स ऑफ फैन फॉलोइंग. ही इज़ अ पायनियर इन म्यूजिक इन अ लॉट ऑफ सेंसेस. इनकी जो एल्बम आई थी थ्रिलर, इट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ ऑल टाइम्स. चलिए अब हम मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करवा देती हूं कि जो है गिव अवे है मेरे पास सैन इडली रेस्टोरेंट का. और एक्चुअली यू नो लेट मी जस्ट टेक दिस कॉल ऑन एयर. गुड मॉर्निंग, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Good morning, A group. Hey, Marvin, how are you?
0: I'm good. I saw you. I knew it was you. So, tabhi maine aapko on air le liya. How are you?
1: Thank you. I'm fantastic. It's such a nice thing to hear you Sunday morning. I think you're doing a wonderful show as always.
0: Thank you.
1: But I just wanted to add my two cents to the good, bad, and the ugly.
0: And you're on air, just so you know.
1: yeah. And that's why I want to
0: yes,
1: share this topic.
0: Yes, please. So, go ahead.
1: Okay, A group, you know. Propagandas and you know stories that we hear are only experiences that we know of from who said what and what we heard, right?
0: Exactly.
1: That's where it boils down to the normal man or the common man or the layman.
0: Ji.
1: Now I'm just going to point out one thing, that if somebody could write so beautifully, be that this song, be that you know the Earth song, be that Dangerous, Billie Jean, God is on the Dance Floor, and the whole Illuminati chapter and the Nine Yards. I think it's very tough for somebody to have such talented two faces, if at all he was involved in the ugly. Right? Because aap itna khoobsurat likhte hue, aapke khayalat itne bure nahi ho sakte. Kyunki agar aapke khayalat bure honge, aap bure insaan hoge. तो आप कभी इतनी इच्छाई और इतनी इतनी लिखाई के मुकाम तक पहुंच नहीं पाओ.
0: नहीं पहुंच पाओ.
1: सो माई टू सेंस वॉज ओनली दिस दैट यू नो वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑफ अगेन व्हाट वी हैव हर्ड एंड व्हाट वी हैव सीन थ्रू द फोकल पॉइंट दैट इज मेंट फॉर अस टू सी फ्रॉम. बट आउटसाइड ऑफ दैट वी रियली डोंट नो व्हाट वाज द इनसाइड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड व्हाट वाज देयर But their propaganda or agenda.
0: Absolutely.
1: So I think for somebody who's given us some wonderful music, some wonderful lyrics, a whole generational movement
0: yes.
1: of honesty and caring for others, I think for me, that will always stand out.
0: Absolutely. And kuch na kuch in mein unique baat hoti hai. Definitely, you touched upon it so well ke in mein itni achhai hoti hai ke inko generations yaad karti hain. They have left a work which is so vast and widespread and unique. कि अगर उनमें कुछ थोड़ी सी बुराई है तो उसको नज़रअंदाज कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज यू नो वी हैव नॉट सीन इट फर्स्ट हैंड, वी हैव ओनली हर्ड एंड
1: एंड बुराई है कि नहीं, आई डोंट थिंक वो हम कभी भी
0: जान पाएंगे.
1: इट्स अ स्पेकुलेशन ऑफ थिंग्स एंड थॉट्स, बट आई थिंक व्हेन यू लुक एट द होल पिक्चर द गुडनेस कम्स आउट मोर देन व्हाट द प्रोपेगेंडा वाज. अगेन Hey, Groovy, thank you so much.
0: Thank you, Marvin.
1: It's a lovely thing to hear your voice on Sunday morning. It's very comforting and calming.
0: It's so great to talk to you as well. Marvin ने मेरे शो पर कॉल कर दिया, मुझे और क्या चाहिए. रोज मार्विन आप सबको एंटरटेन करते हैं 5 to 7, एंड व्हेन आई एम कमिंग बैक फ्रॉम वर्क आई डेफिनेटली ट्यून इन टू हिज शो. और इनके आपके जो मार्विन जो वन लाइनर जोक्स होते हैं ना, दे ऑलवेज क्रैक मी अप. सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस शो वंडरफुल विद योर प्रेजेंस. आई रियली अप्रिशिएट इट.
1: थैंक यू
0: जी. बाय बाय. So, yes, so I was just talking about Michael Jackson, the great singer, the great personality, and he has left behind some wonderful work. Thank you, Marvin, for coming on here. And yes, जो टैलेंट है वो तो टैलेंट है, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, उसको कोई छुपा नहीं सकता, कोई उसको कंसील नहीं कर सकता. सो माइकल जैक्सन बॉर्न ऑन 29th ऑफ ऑगस्ट एंड दैट इज़ व्हाई आई प्लेड हिज सॉन्ग. अच्छा, सैन इडली की तरफ से जो गिव अवे है उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, बट उससे पहले एक सॉन्ग प्ले कर देती हूँ ऐसे, इट्स नॉट रिलेटेड टू द गिव अवे. आई जस्ट फाउंड द सॉन्ग एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट इज़ अ रेंडिशन ऑफ अ सॉन्ग विच वॉज ऑलरेडी संग इन 1990s. कुमार सानू साहब की आवाज़ का सॉन्ग है, बट दिस वन, दिस सिंगर हैज़ डन सच अ फैंटास्टिक जॉब. ये सॉन्ग सुनिए एंड देन वी विल कम बैक एंड इट विल बी अ क्विक गिव अवे बाय सैन इडली एंड द क्वेश्चन विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट. सो हियर यू गो, दिस इज़ अ सॉन्ग विच आई जस्ट रिसेंटली फाउंड आउट एंड आई वॉन्ट to play it here for you all.

ये एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं एंड इनका नाम वर्षा सिंह धनोआ। अगर आप इनको सर्च करें तो इनके और भी बहुत सारे और अच्छे सॉन्ग्स हैं जो आप सुन सकते हैं। दिस वन डेफिनेटली कॉट माई अटेंशन बिकॉज ऑफ द वेलवेट वॉइस दैट शी हैज़, द तबला दैट प्लेज इन द बैकग्राउंड, एंड ऑफ कोर्स इनकी जो आवाज़ की जो वेरिएशन है इतनी ज़बरदस्त है। द क्वालिटी ऑफ हर वॉइसेस इज़ सो सूदिंग, एंड इनमें सूफी टच भी है इनकी आवाज़ में, एंड शी डज़ सिंग सूफी सॉन्ग्स इज़ वेल। तो ये वाला जो इन्होंने एक किसी लाइव कॉन्सर्ट में थोड़ा सा ये पीस गाया था, एंड दिस हैज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट वंस रिसेंटली, सो आई जस्ट थॉट कि मैं यहाँ पर आपके लिए प्ले करूँ। अच्छा, गिव अवे 9:19 हो रहे हैं, आई थिंक, वो 9:20 हो रहे हैं, तो आई थिंक मैं क्विकली अनाउंस कर सकती हूँ सैन इडली रेस्टोरेंट विच इज़ गिविंग यू अ चांस टू विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस विद वन फिल्टर कॉफ़ी। सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट विच इज़ लोकेटेड क्लोज बाय, और ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पर जाकर अपना जो है ये क्लेम कर सकते हैं कि बोबे व्हेन यू विन आई एम गोना गिव यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। तो क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से, विच इज़ लोकेटेड इन वन ऑन 121 इन कस्टर, सो क्लोज बाय इन फ्रिस्को स्लैश मिकेनी। वहाँ पर आप डोसा एंड अपनी फिल्टर कॉफी जो है जीत सकते हैं थ्रू दिस गिव अवे। यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ दोज थ्री फिल्म्स जिसमें ये तीन एक्टर्स ने ट्विन का रोल प्ले किया है। नंबर वन, सलमान खान ने कौन सी फिल्म में ट्विन का रोल प्ले किया है? शाहरुख खान की कौन सी वो फिल्म है जिसमें उनका ट्विन डबल रोल है? एंड अर्जुन कपूर की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनका डबल रोल है? सो थ्री डिफरेंट एक्टर्स, थ्री डिफरेंट फिल्में, आप मुझे नाम बता दीजिए एंड आई विल बी सिलेक्टिंग टू विनर्स फॉर दिस रेस्टोरेंट गिव अवे विच इज़ सैन इडली। तो क्वेश्चन क्विकली मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज 9:30 होने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, सलमान खान ने कौन सी फिल्म में ट्विन यानी कि डबल रोल प्ले किया था? शाहरुख खान की वो कौन सी मूवी है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है? एंड अर्जुन कपूर की कौन सी वो फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है? वेरी सिंपल, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आ जाएगा। सलमान खान, शाहरुख खान एंड अर्जुन कपूर, दे आर नॉट इन द सेम फिल्म डेफिनेटली, इनकी अपनी अपनी ये तीन डिफरेंट फिल्में हैं जिसमें उन्होंने डबल रोल किया है। सलमान खान की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया? शाहरुख खान की उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें शाहरुख खान का डबल रोल था। एंड अर्जुन कपूर की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनका डबल रोल था? सो यू नो, लेट मी प्ले दिस सॉन्ग। हमारी एक लिसनर है, उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। व्हाइल यू गाइस थिंक एंड टेल मी 9722355555।

0: Good morning, you're live
1: हेलो,
0: on air. Yes, hi.
1: हाय. जुड़वा डुप्लीकेट औरंगजेब.
0: Aurangzeb. Are you sure? Mujhe, I'll have to move on to the next caller. कुछ सही जवाब दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया. लेट्स सी ये क्या कहते हैं. गुड मॉर्निंग, यूर लाइव ऑन एयर.
1: या हाय, गुड मॉर्निंग.
0: यस,
1: हैप्पी संडे.
0: हैप्पी संडे. थैंक यू. टेल मी योर नेम फर्स्ट.
1: यस, माय नेम इज दीपा.
0: दीपा, तो आपने गिव अवे के लिए कॉल किया है.
1: यस, दैट्स
0: सो
1: राइट.
0: द क्वेश्चन इज, सलमान खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म एंड अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें इन्होंने डबल
1: डबल
0: रोल.
1: रोल.
0: हाँ जी.
1: सो इट्स हेलो ब्रदर्स फॉर सलमान खान
0: ओके.
1: एंड डुप्लीकेट फॉर शाहरुख खान और मुबारक खान फॉर अर्जुन कपूर.
0: सो आपने मुझे दो सही जवाब दिए, एक आपका भी इनकरेक्ट है. सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर. थैंक यू सो मच दीपा.
1: ओके.
0: गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर. आर यू कॉलिंग फॉर द गिव अवे? गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर. आर यू कॉलिंग फॉर द गिव अवे?
2: Hey, good morning.
0: गुड.
2: Just wanted to give you the answer.
0: यस, पहले अपना नाम बता दीजिए.
2: मेरा नाम जयेश है.
0: देव, देव, देश.
2: No, जयेश, जयेश, JAYESH.
0: ओके, देश. ठीक है, चलिए. तो आप मुझे बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान एंड अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है.
2: आई थिंक सलमान खान की जुड़वा मूवी है.
0: हम्म.
2: और शाहरुख खान की डुप्लीकेट है एंड अर्जुन कपूर की शायद औरंगजेब करके एक मूवी आई थी. दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर वेगली.
0: सो औरंगजेब, आप सेकंड कॉलर हैं. डू आई हैव माय फैक्ट्स राइट? मुझे नहीं लगता औरंगजेब में उनका डबल रोल था. लेट मी टॉक टू दिस अनदर कॉलर. या अपना प्लीज रेडियो नीचे कर लीजिए वॉल्यूम एंड टेल मी व्हाट इज योर नेम एंड टेल अस इफ यू आर कॉलिंग फॉर द गिव अवे.
1: Yeah, hi, my name is Saurav. Yes, we are calling for the giveaway.
0: Yes.
1: So I think the answers that we gave last time, Jurwa duplicate Aurangzeb, are correct. Can you please check?
0: Aurangzeb mein unka double role tha?
1: Yes.
0: Really? Mujhe lagta
3: hai. Online check kar sakte hain. Aap online check kar lo.
0: Okay.
1: Aap online check kar lo.
0: Theek hai. Okay. What is your name? So you said Saurav is your name?
1: Yes.
0: Okay, ठीक है, चलिए. लेट मी स्पीक टू यू ऑफ एयर. एक्चुअली यू नो वट, कॉल मी बैक राइट अवे. लेट मी जस्ट लिसन टू दिस अनदर कॉलर. ओके, आप मुझे फिर से कॉल कीजिए एंड आई विल अनाउंस. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर.
4: हाय,
0: हेलो. सो यू हैव द आंसर टू द गिव अवे. हाँ जी, बताइए.
4: सो फॉर सलमान खान इट्स जुड़वा, शाहरुख खान इट्स डुप्लीकेट
0: अर्जुन कपूर की कौन सी है?
4: औरंगजेब.
0: हाउ कम मुझे नहीं पता और आप सबको पता है? सो औरंगजेब में था अर्जुन कपूर का डबल रोल. ओके, सो देन आई थिंक देन यू प्रोबेबली हैव द राइट आंसर. सो आई विल हैव टू गिव इट टू सौरभ बिकॉज उस आपसे पहले उन्होंने मुझे राइट आंसर दिया. मैं सोच रही थी कि एक और दूसरी मूवी है, द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉर. सो समहाउ आपने मुझे, किसी ने उस फिल्म का नाम नहीं बताया एक्सेप्ट फॉर वन कॉलर. सो आई विल गो विद व्हाट द मेजॉरिटी सेज. सो सौरभ को मुझे देना पड़ेगा गिव अवे एंड आई विल चेक माई फैक्ट्स एज वेल. मैंने मूवी नहीं देखी औरंगजेब, सो आई डोंट नो कि उसमें उनका था डबल रोल या नहीं. बट थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट. जी, गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर.
5: हेलो,
0: हाय. आपने
5: फॉर सलमान खान इज जुड़वा.
0: हाँ जी.
5: एंड फॉर शाहरुख खान इज डॉन एंड मुबारक फॉर अर्जुन कपूर.
0: हाँ, बट मुझे आपसे पहले किसी एक कॉलर ने बता दिया है, सो आई विल हैव टू ऑनर इट टू हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर.
6: Hey, good morning. Yes. I was answering the question. I think you said Aurangzeb, but I think if the question is if it's like they are twin brothers, then Aurangzeb is the wrong answer.
0: Huh. So, because, okay, now everybody's confused me.
6: Because they were teen brothers in Mubaraka, not Aurangzeb.
0: Yes.
6: And then, Salman Khan was obviously teen brother in Judwa, and Shah Rukh Khan were like twin in duplicate.
0: Exactly.
6: So if you're talking about twin, then you're right. Aurangzeb is not the right answer.
0: I said twin, twin double role.
6: Yeah, so Aurangzeb, they were not twin in the Aurangzeb.
0: So thank you so much. You know, I started to doubt myself. Maine kaha ye main question pooch liya and how come, you know, it doesn't look good.
6: You go ahead with the giveaway, twin.
0: You know, aap apna naam bata dijiye mujhe. You tell me your name.
6: Hiren.
0: What is it?
6: Hiren, H-I-R-E-N.
0: Oh, Hiren, theek hai. So you know what? Let me just give you the giveaway. Actually, मुझे दो winners चाहिए, तो एक मैं आपको दे देती हूँ और एक मैं सौरव को दे देती हूँ. I do want to honor it to him as well, क्योंकि उन्होंने दो बार मुझे call किया. So सौरव, अगर आप सुन रहे हैं तो please you can call me back. And Hiren, just stay here. I will take your details off air. आप just hold कीजिए, okay? Let me just play this song and then I will let you know how you can win your giveaway.
6: Sure.
0: Okay. Sure, so here you go.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
8: Floors clean?
10: Check.
8: Windows clean?
10: Check.
8: Kitchen clean?
10: Check.
8: Air ducts clean?
10: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
12: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

थैंक यू आप सबके फोन कॉल्स ड्यूरिंग द ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक ऑल्सो, दैट इज वाई मैं ऑन एयर आके आपको वेलकम नहीं कर सकी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. इट इज 9:39, 20 मोर मिनट्स एंड 10 बजे ये शो कंक्लूड होता है. 7 to 10, बहुत क्विकली ये 3 घंटे चले जाते हैं. आप सबसे बातें होती हैं एंड देन गिव अवे पर ऑन एयर पे भी बातें होती हैं. सो स्पीकिंग ऑफ गिव अवे, आई डू अप्रिशिएट, आप सबको बहुत नॉलेज है, वी हैव टू गिव इट अप टू यू गाइज एज वेल. हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, खैर अब तो अभी व्यूअर्स तो नहीं मैं बोल सकती क्योंकि अब व्यूइंग वाला ऑप्शन नहीं है, बट हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड हैं. क्वेश्चन जो मेरा था गिव अवे का, ये था कि ट्विन का जो है डबल रोल, ट्विन ब्रदर्स इज व्हाट, मैंने ब्रदर्स वर्ड नहीं यूज़ किया था, बट आई डिड से कि ट्विन रोल जो है शाहरुख खान, सलमान खान एंड अर्जुन कपूर ने कौन सी फिल्म में किया. तो द आंसर वॉज जुड़वा, डुप्लीकेट एंड मुबारका. मुबारका में जिसमें उनके साथ उनके रियल लाइफ चाचा जो है, मूवी में चाचा भी थे और मामा भी थे अनिल कपूर, एंड सो बड़ी एंटरटेनिंग, बहुत अच्छी फिल्म थी. सो ये दिस वाज द राइट आंसर एंड एक कॉलर ने तो तीनों ही राइट जवाब दिए आफ्टर क्लैरिफाइंग द कन्फ्यूजन. एंड देन जो दूसरे कॉलर हमारे सौरव, ही आई गेव हिम, अनाउंस्ड हिम एज द विनर टू. ही डिड मेक दैट एफर्ट ऑफ कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स एंड एक्सप्लेनिंग कि कहाँ पे डबल रोल है और कहाँ पे नहीं था. सो एनीवे, सौरव एंड हिरेन हमारे दो विनर्स रहे आज सैनिडली के जो है गिव अवे. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी दैट कॉल्ड इन नॉन स्टॉप. एंड ये वाला सॉन्ग मैं रिज्यूम करूँगी एंड देन आपके जो रिमेनडर, जो रिमेनिंग और भी रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स हैं उनको मैं प्ले करूँगी. सो लेट मी जस्ट रिवाइंड इट अ लिटल बिट.

जैसे कि फनेजिया की एक बहुत पॉपुलर लाइन है, एंड दैट इज़ आर मॉटो, दैट इज़ आर मोटिव, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. वैसे ही ये वाला जो रेस्टोरेंट है, जब खुला था बैक इन 1944, सतीश चोना, जिन्होंने अहमदाबाद में ये रेस्टोरेंट खोला था, और उनका भी यही बिलीफ था कि जो फूड है उसके उसमें इतना इतना जादू होता है कि सब लोगों को वो इकट्ठे लेकर आता है. गुड फूड ब्रिंग्स फैमिली टुगेदर, ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं जब भी इस रेस्टोरेंट के बारे में इनकी जो है लाइव अनाउंसमेंट करती हूँ, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू वंडर कि इसको बोलते क्या हैं. तो आई थिंक इट इज़ हॉको, और अब मुझे पता चला है कि ये एक एक्रोनिम है, और ये जो चोना जिन्होंने ये खोला था ये रेस्टोरेंट, सो देन द स्पेलिंग ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ HOCCO. और अभी मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा है जाके, तो लिखा हुआ है हाउस ऑफ चोना कोलैबोरेटिव, तो ये HOCCO, आई थिंक ये वहीं से बना है, ये उसका एक्रोनिम, एंड इसी नाम का ये रेस्टोरेंट है जो कि अब आ चुका है फ्रिस्को में. सो आप जाकर ज़रूर ट्राई करें. इट ब्रिंग्स बैक फ्लड्स ऑफ मेमोरीज, अ फ्लड ऑफ मेमोरीज ऑफ, एंड दैट हैज़ बिन अपीलिंग टू द जेनरेशंस. जो है टेस्ट बड्स आपके बहुत ही एकदम जगा देगा. लेजेंडरी चना पूरी, और फिर सैंडविचेस, करीज, और इनकी जो सबसे पॉपुलर जो है इनकी कोल्ड कोको, आई एम अस्यूमिंग कोल्ड कॉफ़ी है, और ये आप ज़रूर जाके ट्राई करें. इनफैक्ट नाउ एज आई एम रीडिंग अबाउट इट, तो मुझे भी इंटरेस्ट हो रहा है कि जाके देखना चाहिए ये क्या है. हॉको प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में लोकेटेड है, एंड दे आर नोन टू बी वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स. नाउ दे आर हियर इन फ्रिस्को, सो डेफिनेटली डू गो एंड एन्जॉय. हमारी लिसनर जिन्होंने ये वाला सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, दिस इज़ अ फ्यूजन, इंडो वेस्ट Western fusion of a very popular song from the 80s.

1979 में आई थी ये फिल्म कुर्बानी, जिसका हम सॉन्ग सुन रहे थे. फास्ट फॉरवर्ड टू अबाउट 20 इयर्स, 1998 में ये वाली फिल्म आई, जिसका मैंने गिव अवे में क्वेश्चन पूछा था. और ये वाला सॉन्ग बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्टेड सॉन्ग फ्रॉम एनी ऑफ आवर लिसनर्स. मैंने अपनी तरफ से सोचा कि ये हम क्योंकि डुप्लीकेट की बात कर रहे थे, तो ये डुप्लीकेट फिल्म के जो ओरिजिनल शाहरुख खान है और ओरिजिनल म्यूजिक है, एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म वॉज ओरिजिनल एक्सेप्ट फॉर द नेम इट्सेल्फ विच वॉज डुप्लीकेट. तो ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है. शाहरुख खान, जूही चावला एंड आई थिंक सोनाली बेंद्रे भी हैं इस सॉन्ग में.

डुप्लीकेट फिल्म का ये बड़ा अच्छा सा सॉन्ग और शाहरुख खान पर फिल्माया गया, जूही चावला एंड सोनाली बेंद्रे. बोल, अब जो मैं नेक्स्ट वाला सॉन्ग लगाऊंगी वो होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग. संडे 7 to 10 मेरी आपके साथ यहाँ पर सो कॉल्ड मुलाकात होती है, जो कि हम सिर्फ आवाज़ सुनते हैं एक दूसरे की एंड अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुनते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं. बोल, टाइम टू गो फॉर मी नाउ. मुलाकात होगी अगले संडे बिल्कुल यहीं पर. आप बस अपना जो है ध्यान रखें, एंजॉय योर वीक द अपकमिंग वीक एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे टुडे. मधुलिका इज गोइंग टू कम हियर एट 10 एंड शी विल बी हियर विद यू अंटिल 12. बट फॉर राइट नाउ दिस इज आरजे एकरूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. हैव अ वंडरफुल डे. बाय बाय.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
5: F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी. वरना
9: दूल्हे
8: को टाटा बाय बाय
9: कर दो. अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं.
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezaar कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फनीशियर रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। सैटरडे संडे होता है मेरा और आपका साथ सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखे याद 9722355555। सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट और संडे होते हैं कुछ फन फैक्ट्स कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर और सुनते हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने। सो वेल लेट्स स्टार्ट विद मेरी पसंद एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है देन द नंबर वंस अगेन इज 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू ए ग्रुप फॉर अ फैब फैब शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग। थैंक यू सो मच ए ग्रुप वंस अगेन।

वेल भूल जो है वो कभी टैक्स फाइल करने में नहीं होनी चाहिए बिकॉज भारी पड़ सकती है राइट. तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आपको मैं एजी फिनटेक्स के बारे में बताऊंगी बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US एंड इनके पास बहुत से इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज हैं विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, इनकी टीम बहुत ही एफिशिएंट है एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो आप एजी फिनटेक्स को कॉल कर सकते हैं, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintax.com. यू नो वेल दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG FinTax.

Well, that was Galagoria de Witch Toy. अच्छा, अगर आप कुछ यू नो हेल्थ सर्विस के बारे में जानना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर को, कोई अच्छी क्लिनिक को, तो मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताऊंगी. बिकॉज इफ़ यू हैव नो हेल्थ इंश्योरेंस और इज पैशन हेल्थ आउट ऑफ योर नेटवर्क, देन स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. जी हाँ, योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट, केयर कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. यू नो, सो यू कैन कॉल और टेक्स्ट एट 214-666-6259 और विजिट passionhealthphysicians.com. That's passionhealthphysicians.com, as passion health is our passion, your health, our community. Well, you know, so definitely passion health primary care, yaad rakhiyega. This program is not health insurance. Eligibility restrictions apply.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: बेटा, 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
16: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
17: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
18: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
17: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
18: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
16: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
19: The Dill of Dallas, heart to heart, fun.

well, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट फॉल या ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसको आप पर्दे में ना रहने दें, उसको आप पर्दे से बाहर लाएं, क्योंकि हो जाता है कभी खुद की कभी दूसरे की गलती से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कार या ट्रक एक्सीडेंट में या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में। देन आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद, क्योंकि ये आपका केस ना केवल लड़ेंगे बल्कि आपको कॉम्पनसेशन भी दिलवाएंगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज का स्ट्रेस भी यही डील करेंगे। एंड मजे की बात, आप इन्हें कुछ भी पे नहीं करेंगे टिल यू विन योर केस। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 469-300-5046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com। एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, वेल दैट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, इट्स अनामिकाज कहीं करता होगा।

पर अगर आप इंतजार कर रहे हैं अपने ड्रीम होम को खरीदने का, तो आपका इंतजार हुआ खत्म. वो इस तरह दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज की जो टीम है हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू अ रियलिटी. इनके पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस हैं विद अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. तो आप किसी भी स्टेट में ये घर अपना ले सकते हैं. देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस दैट आर टेलर्ड टू योर नीड्स. क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, तो दे कैन लिटरली टेलर एज पर योर नीड्स योर मोर्गेज सॉल्यूशंस. वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम या आप अपग्रेड करवा रहे हैं, रीफाइनेंसिंग करवा रहे हैं, यू नो, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे. आप ड्रीम होम मोर्गेज को कॉल करें. द नंबर इज 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन.

0: चल, अगर आप दीवाने हैं कुछ अच्छा अच्छा खाने के, तो मैं आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। इट्स लोकेटेड इन गार्लैंड, इट्स अ न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स। चाहे आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स खाने का मन है, या रिच करीज, या फिर ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच, देन तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज़ देयर फॉर यू। फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेट करीज, फ्रेश हॉट नान्स, एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन। सो आपको कोई एक पर्टिकुलर डे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरी डे कैन बिकम अ सेलिब्रेशन फॉर यू। स्टेप इन टूडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डनरी डे इन टू अ फीस्ट। सो तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट रखे याद, दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड।
1: Shake it, daddy. Shake it, daddy. Shake it.

0: Shake it, daddy.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: How may I help you?
3: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं। Everyone's asking lunch में क्या है?
2: Fear not, we have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
4: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: Tracks that put you on the right track.

दैट वॉज अ स्वीटी तेरा ड्रामा एंड मैं कहती हूँ नो ड्रामा ओनली एलिगेंस राइट तनिष्क तनिष्क एंड तनिष्क जी हाँ डायमंड्स आर्न जस्ट फॉर एवर दे आर इवन मोर इरेजिस्टिबल ज्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. क्या है ये फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स? वेल यू कैन एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड विच इज़ अबव 18 कैरेट. तो आप अपना पुराना सोना जो 18 कैरेट से ऊपर है यू कैन गो एंड एक्सचेंज एंड सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को. दिस इज मधुलिका लेकर आई हूँ जस्ट चिल जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक.

जी हाँ बिल्कुल, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि आ जा नच ले, बिकॉज कुमार सानू आ रहे हैं, जी हाँ, अनफॉरगेटेबल 90s लेकर. जी हाँ डालस, गेट रेडी फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस एंड प्योर 90s का नॉस्टैल्जिया. जी हाँ, द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स इज कमिंग लाइव टू प्लेनो. जी हाँ, एक्सपीरियंस कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, द अनफॉरगेटेबल 90s. ये होगा ऑन September 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. सिंग अलॉन्ग टू द सॉन्ग्स दैट यू ग्रू अप विद एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ एन एरा दैट स्टिल लिव्स इन आर हार्ट्स. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल with free parking and exclusive meet and greet options as well. Book your tickets today at eventbrite.com or you can call 214-869-2668 for more information. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group. That's Kumar Sanu's Unforgettable 90s.

Well, that was taken from the movie Dhurandhar and बिल्कुल जो है लड़ी लगी हुई है रिक्वेस्ट की एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. थोड़ा सा स्लो है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है एंड दिस इज मधुलिका लेकर आई हूँ जस्ट चिल जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. बनूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
3: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लान, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
12: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: भूख लगी है या बस कुछ exceptional खाना है?
15: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, it's what your mood is actually craving.
16: Quick bite, a perfect lunch ambience, an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
17: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
18: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
19: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
19: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
19: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
20: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

0: flavor on, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

मीरा भाई ने कोई के कीधू के मीरा भाई तमे कृष्ण नी भक्ति करो एमा वांधो नथी, पण तमे कृष्ण ने पति क्यों छो एनी हारे अमने तकलीफ छे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
0: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो.
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
0: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
13: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: वी नीड टू टॉक.
15: अब क्या हुआ?
14: नथिंग, इट्स नॉट यू.
15: ओह नो,
14: इट्स द डिस्टेंस.
15: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट.
14: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन.
0: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर. सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग. योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर. सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस.
16: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के गाने से ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल, आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए इस वीकेंड के संडे सेगमेंट में आपके लिए कुछ प्राइवेट एल्बम्स की बातें, इंडी म्यूजिक, नॉन फिल्मी सुपर हिट्स, गज़ल की बातें होती है, सुपर हिट सूफी बैंड की बातें होती है, कुछ नए बैंड्स की बातें होती है, वेब सीरीज़ कौन कौन सी आप देखते हैं, OTT दुनिया की कुछ नई नई बातें होती है, आपसे रिकमेंडेशन मैं लेती हूँ, आपसे राय भी लेती हूँ कि कौन सी वेब सीरीज अच्छी है, कौन सी बिंज वॉचिंग करनी है, कौन सी छोड़ देनी है, बाकी सारी ड्रामास के भी गाने सुनते हैं और ये सारे नॉन फिल्मी बातें, नॉन फिल्मी गाने टिल 2 PM। तो चलिए फिर देरी किस बात की, और मुझे ये पक्का यकीन है, उम्मीद भी है कि मेरी पसंद आपकी पसंद एक ही होती है और इसीलिए ढेर सारे शुक्रिया पहले से ही कर देती हूँ मेरी पसंद को पसंद करने के लिए। और 104.9 FM फनेश रेडियो, संगीत है जहाँ पर, सुर है जहाँ पर, वही लम्हे मैं लाती हूँ आपके लिए एवरी वीकेंड।

सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, कितनी खूबसूरत सूफी बात से शुरुआत कर ली है हमने इस सेगमेंट की ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम। और ये जो एक सूफी कवाली या सूफी भजन जो भी आप कह ले, सबसे पहले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने 1970s में ये गाने गाए थे, ये उन्होंने कवाली गाई थी ऑन द स्टेज। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने जब भारत का पहली बार दौरा किया था तब एक पब्लिक कार्यक्रम में ये गाना गाया था। और ये कहा भी जाता है, विच आई एम नॉट श्योर ऑफ, इसके वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कहा जाता है कि ऋषि कपूर की जब शादी हुई थी उन्हें न्योता मिला था और उनकी शादी में भी उन्होंने यही गीत गाया था। और उसके बाद तो ऑफकोर्स बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपने अंदाज में अपनी अपनी गायकी में, चाहे आप राहत फ़तेह अली खान साहब की बात कर ले, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में भी ये गीत बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसी तरह से रीचा शर्मा ने भी, कैलाश खेर साहब ने, अलग अलग सिंगर्स ने अपनी तरह से ये गीत हमें सुनवाया है। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने गीत सुना, दैट वॉज इन द वॉइस ऑफ सचित टंडन, जी हाँ। और बस ऐसे ही कुछ अलग अलग सिंगर्स अलग अलग अंदाज में आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर इस सेगमेंट में ऑन 104.9 FM फनेश रेडियो एवरी संडे।

बिल्कुल, आप आवाज़ तो पहचान ही गए। रेखा भारद्वाज की आवाज़ थी, विशाल भारद्वाज का संगीत था, तेरे इश्क में, प्राइवेट एल्बम। जी हाँ, एक प्राइवेट एल्बम से लिया गया था गीत। आजकल आप रेखा भारद्वाज को वेब सीरीज में ज़्यादा सुनते हैं, फिल्मों में वो गाती है, नॉट दैट शी डजंट सिंग, लेकिन कम गाती है। इतने उनकी गाने हमने फिल्मों में अक्सर नहीं सुने। प्राइवेट एल्बम्स में, गज़ल में, सूफी बैंड में भी वो बहुत अच्छा गाती है, अपना अच्छा काम करती है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग, इफ़ यू आर अ बिग फैन, कि अब वो क्या काम कर रही है इन द रिसेंट डेज, क्या काम है उनका, वॉट इज़ द अपकमिंग प्रोजेक्ट, सो वेल, बहुत लंबे अरसे से वो बंदिश करके एक एल्बम पर काम कर रही है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। जी नहीं, होगा तो बिल्कुल मैं आपको वो गाने उनके सुनवाऊंगी। एंड दैट इज़ ऑफकोर्स कंपोज बाय उनके अपने पतिदेव विशाल भारद्वाज की ही उनकी सारी होगी। लेकिन वो जो शायरी है, वो जो जितनी भी शायरी है इस एल्बम में जिसका नाम है बंदिश, वो सारी शायरी है बशीर बत्रा की। जी हाँ, बशीर बत्रा की जितनी भी नज़म है, जितनी भी शायरी है, जितनी भी गज़ल्स है, उनको वो कंपाइल करके एक एल्बम बना रही है जिसका नाम है बंदिश। और वो बंदिश एल्बम है जहाँ पर विशाल भारद्वाज के संगीत में सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत वो एल्बम होगा जो हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि यही है सेगमेंट जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं प्राइवेट एल्बम्स के गाने, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें, कुछ सूफी बैंड की बातें, कुछ नए नए कलाकारों की बातें ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एवरी संडे विथ मी योर होस्ट नीलम।

हमारे टीवी पे, मैं इंडियन टीवी की बात कर रही हूँ, रियलिटी शोज इतने होते हैं एंड इट स्टार्टेड आई थिंक इन अर्ली 2000, राइट, जहाँ पर सिंगिंग रियलिटी शोज बहुत बढ़ गए थे. नाउ व्हेन इट वाज न्यू इन 90s, लेट 90s की मैं बात कर रही हूँ, तब ऑफकोर्स कुछ अलग बात लग रही थी, सम यूनिकनेस कि हाँ भाई सारे गमा स्पेशली जो हम सभी देखते थे व्हेन आई वाज इन स्कूल, एंड इट वाज स्पेशली फॉर द म्यूजिक किड्स, लाइक म्यूजिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत कुछ सीखने मिलता था इन लेट 90s ये जो शो आया था. लेकिन बाद में इतने सारे शोज आने लगे, इतने सारे कंटेस्टेंट, इतने सारी बातें, एंड देन एज यूजुअल बहुत सारी बातें भी आती है कि भैया वो पैसे से खरीदते हैं वोट्स, ये वो. बट एनीवे, बहुत अच्छी अच्छी हमें टैलेंट मिली इसी सारे शो से, जैसे कि राहुल वैद, जिसका आपने ये गीत सुना, रातों रात सुपरस्टार बन गए थे जब उन्हें सेकंड रनर अप डिक्लेयर किया गया था इन इंडियन आइडल में. वो थे सेकंड रनर अप और उसके बाद वो जीते नहीं थे, लेकिन खैर जैसे इंडियन आइडल है वैसे बहुत और भी रियलिटी शोज है सिंगिंग के. तो उन्होंने एक और शो किया था, जो जीता वही सुपरस्टार, म्यूजिक का महा मुकाबला वगैरह वगैरह. उसके बाद नॉट ओनली दैट, ही वेंट टू बिग बॉस. जी हाँ, एज अ सिंगर नहीं, लेकिन बिग बॉस में जैसे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्हें कॉन्टेक्ट किया गया था एंड ही वेंट टू बिग बॉस. तो बिग बॉस के बाद भी उन्होंने आई बिलीव खतरों के खिलाड़ी वगैरह वगैरह शो किए थे. सो रियलिटी शोज की बात यही है, यही दुनिया है उनकी, कि वहाँ एक बार जहाँ पर भी उनकी होती है बात, चाहे वो रनर अप हो, विनर हो, देन देर आर सो मेनी मल्टीपल शोज, देर आर डिफरेंट शोज, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है, राइट. अगर गीत बॉलीवुड में मिले ना मिले, लेकिन यह सारे शोज में काम मिल जाता है. खैर, लेकिन हमारा काम है अच्छे गाने लाना, अच्छी टैलेंट आपको सुनवाना ऑन 104.9 FM फन एशिया. उमर ख्वाजा जी को बिल्कुल याद करना चाहूंगी. खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ छोटा या बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अगर आप सोच रहे हैं कि किन को कॉन्टेक्ट किया जाए, तो 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com, क्योंकि आपको कुछ भी पे नहीं करना अंटिल यू विन. जी हाँ, आपने सही सुना, दैट इज उमर ख्वाजा, 4693005046.

0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
1: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लिनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लिनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लिनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
5: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
7: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
6: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

एंड वेलकम बैक, दिस इज केसीएमपी 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। मैं हूं नीलम आपके साथ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। संडे आफ्टरनून, आई नो आपके बहुत लंबे लिस्ट होते हैं काम के, है ना, ग्रोसरी से लेके बहुत सारे और भी शॉपिंग होती है। अब तो स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुकी है तो बच्चों की भी एक्टिविटीज़ होती है, संडे स्कूल होती है, मंदिर, चर्च, मस्जिद, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं। लंच का कोई प्लान था, लंच पे गए थे, लंच से वापस है, लेकिन खैर आप कहीं भी हो, आपकी राह कोई भी हो, रह गजर तो हम ही रहेंगे एवरी संडे ऑन फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और चलिए पैशन हेल्थ को हम याद कर लेते हैं, 214-666-2259, क्योंकि अक्सर हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दीजिए, एंड वक्त नहीं मिलता उनके पास से, लेकिन पैशन हेल्थ में बिल्कुल उनकी पूरी तवज्जो, पूरा वक्त, पूरी अटेंशन आपको मिलेगी। एंड आप उनको कभी भी जा सकते हैं, आई थिंक दे ऑल्सो हैव वॉक-इन्स, लेकिन नंबर अगर आप उनका चाहे 214-666-2259, दैट इज 214-666-2259, और प्रिवेंटिव केयर की बात हो, फॉलोअप्स की बात हो, या फिर आपके एनुअल केयर की बात हो, एक ही नाम, पैशन हेल्थ केयर। तारा कमर्शियल एनर्जी सिंस 2002, जी हाँ, विद कम्पिटिटिव रेट्स, बिजनेस के लिए एक ही नाम, कमर्शियल एनर्जी है, तारा कमर्शियल एनर्जी सिंस 2002, एंड द वेबसाइट इज taraenergy.com। तो ये तो हो गया, हम शुक्रिया अदा हमारा बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के लिए। आप चलते हैं हमारे गानों की तरफ, और जो हमारे गाने होते हैं आप जानते ही हैं, संडे आफ्टरनून हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं गैर फिल्मी गाने, गैर फिल्मी बातें, कुछ वेब सीरीज की भी बातें होगी, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी बातें होगी, कलाकारों के साथ ऑन 104.9 FM एवरी संडे।

इश्क के यहाँ पर राज ना आया। 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ। और OTT प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स होते हैं, अमेजोन प्राइम पे भी मूवीज़ होती है, सारे सारे प्लेटफॉर्म अपनी अपनी मूवीज़ प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड आने लगा है कि जब बड़े बड़े कमर्शियल हमारे जो डायरेक्टर्स हैं एंड एक्टर्स हैं वो जब अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ नॉट द प्रोडक्शन हाउस इज़ नॉट नेटफ्लिक्स, प्रोडक्शन हाउस इज़ नॉट एनी OTT प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन प्रोडक्शन हाउस कोई भी हो, दे डोंट वॉन्ट अ थिएटरिकल रिलीज़। उन्हें लगता है कि थिएटर में रिलीज़ करो ना करो, डिस्ट्रीब्यूटेशन से बात करो, एंड यू नो पैसे मिले ना मिले, फिल्म चले ना चले। सो वॉट दे आर ट्राइंग टू डू दिस डेज इज़ कि डायरेक्टली सेल टू द एनी बिगर कंपनीज, जैसे कि नेटफ्लिक्स है या कोई भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म के प्रोडक्शन हाउस को, ताकि आपकी जो इनकम है वो तो पक्की है, आपको पता है कि ये इतने पैसे तो मिलने ही वाले हैं। सिमिलरली अरशद वारसी और तिग्मांशु धूलिया की एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम है धमासान। जी हाँ, और इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट इन थिएटर्स, तिग्मांशु धूलिया ने सोचा कि इस फिल्म को डायरेक्टली हम रिलीज़ कर देते हैं ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म। तो बस अब ये फिल्म थिएटर में नहीं होगी, आप उसे डायरेक्टली देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म पे। कब होगी वो नहीं पता, लेकिन जी बिल्कुल कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हमें पता चलेगा। और जब भी हमें पता चलेगा हम आपके लिए लाएंगे ही ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो ऐसी बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म की गैर फिल्मी बातें यहाँ एवरी संडे।

शाह ज़मान अली खान साहब की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। और कभी कभी ये बात होती है कि पापा से ज़्यादा हमें बेटा 10 कदम आगे होता है, एंड हर पापा की यही उम्मीद होती है, राइट? इफ़ यू आर अ फादर, आई एम श्योर आप भी यही चाहते होगी कि मेरा बेटा मैंने जो काम किया उससे 10 गुना अच्छा काम करे, उसकी तरक्की 10 गुना ज़्यादा हो। राहत फ़तेह अली खान साहब आई एम श्योर वहीं सोचते होंगे, उनके बेटे की आवाज़ थी ये शाहज़मां अली खान साहब। और राहत फ़तेह अली खान साहब, नो डाउट अबाउट इट, ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट सिंगर। उन्होंने जो सूफ़ी गाने गाए, जो रूह को छूने वाली उनकी आवाज़ है, लेकिन यू नो वेन एवर आई हियर हिज सॉन्ग, उनके जो बेटे की मैं बात कर रही हूँ, उनकी आवाज़ जब भी मैं सुनती हूँ, आई थिंक ही हैज़ मोर ऑफ उनकी जो डीप वॉइस है, उनके टेक्स्चर में भी कुछ अलग बात है एंड ज़्यादा कशिश है। एंड अगेन यू नो इवन दो दे आर फादर एंड सन, सबकी आवाज़ अलग होती है, सबकी गायकी अलग होती है, लेकिन कुछ अलग बात है बिल्कुल उनकी बेटे की आवाज़ में। एंड आई एम श्योर ये राहत फ़तेह अली खान साहब जब जब भी आप अपने बेटे की तारीफ़ सुनते होगे, उनको लगता होगा कि बस यही तो अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरा बेटा मुझसे कुछ आगे बढ़ जाए। तो चलिए ऐसे ही कुछ संगीत की बातें, दिलों की बातें, एवरी संडे विथ मी योर होस्ट नीलम।

एक शो की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन सोचिए जरा कि उसमें नीना गुप्ता हो, उसमें अर्जुन बिजलानी, सुमित व्यास, सुमित राघवन, ऑफकोर्स यू रिमेम्बर सुमित राघवन राइट, देवेन भोजानी, अ ग्रेट ग्रेट कॉमेडी एक्टर देवेन भोजानी, इतने सारे कलाकार, अनंत जोशी जो बहुत ही माहिर है कॉमेडी में और उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छी होती है, उनकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी होती है, ये सारे कलाकार जब एक शो में हो और परिवार की कहानी हो, दोस्तों की कहानी हो, नेवर्स जो हमारे इंडिया में नेवर्स आर लाइक आवर नेक्स्ट इमीडिएट फैमिली राइट, तो ये सारी कहानी जब एक कहानी होती है उसका नाम है चुंबक। और इस चुंबक में ये जो जितने भी मैंने कलाकार आपको बताए ये सारे कलाकार है। देखने की बात ये है कि ये शो की सीज़न कितनी आती है, क्योंकि आई एम श्योर कि पहली सीज़न के साथ तो दिल भरेगा नहीं, इतने अच्छे अच्छे जब कलाकार हो, एंड यू नो व्हेन वी हैव अ फैमिली एंटरटेनर, व्हेन वी नो कि इसमें कुछ इतने इंडिसेंट वर्ड्स नहीं होंगे, कुछ ऐसे सीन्स नहीं होंगे जो हम पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते, तब लगता है कि ऐसी सीरीज बार बार आनी चाहिए। तो बस चुंबक की पहली सीजन रिलीज होगी एंड होपफुली ऐसे और भी शोज हम सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। सुनने के लिए तो हम है भाई फनीशा रेडियो है ना, सुनने के लिए वीकेंड में और वीकडेज में भी, लेकिन वेब सीरीज की मैं बात कर रही हूँ। तो चुंबक जो है उसमें इतने सारे बड़े बड़े कलाकार हैं और ऐसी बहुत सारी बातें हम आपके साथ करते रहेंगे।

हिंदी में एक लफ्ज है सार्थक। सार्थक का अर्थ आप सफल भी कर सकते हैं। कोई छोटी सी जब कोशिश करते हैं और आप जब वो सराहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड मोर देन सराहना, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट सराहना, इट इज़ अबाउट कि चलिए जो सिंगर लाने की मैं कोशिश कर रही थी इस शो के ज़रिए, जो मैं एक अलग कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ कि बॉलीवुड के गाने, फिल्मी गाने मैं ही लगाती हूँ आपके लिए। सैटरडेज़ मेरा जो सेगमेंट होता है बॉलीवुड का, एंड देन संडेज़ आई डू वॉन्ट टू ब्रिंग यू अ न्यू वॉइसिस, न्यू आर्टिस्ट, न्यू एल्बम्स, क्योंकि संगीत की दुनिया बहुत ही विशाल है। संगीत की दुनिया यानी कि सिर्फ नहीं कि बॉलीवुड के ही गाने होते हैं, संगीत की दुनिया में बियॉन्ड बॉलीवुड भी होती है बातें, है ना। तो वही बातें, वही गाने, वही कलाकार जब मैं आपके लिए लाती हूँ, पुराने हो या नए कलाकार हो, पुरानी आवाज़ें हो या नई आवाज़ें, फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म दैट इज़, और जब आप सुनते हैं प्यार से, जब आपके प्यार के सुनने के बाद आप कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही सुनते रहिएगा और हम कोशिश करते रहेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए सैटरडेज एंड संडेज ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा, अनुमति, इजाज़त। मुलाकात होगी अगले शनिवार, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एन्जॉइंग फनेशा रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
5: जीनी हुकम मेरे अका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज चलिए मेरे अका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
13: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
14: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
15: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
13: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
16: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
18: पर बेसिकली देखा जाए तो ये बच्चा मेरा नहीं है ना।

0: All right, you are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. I'm your host, Ria. We are about 30 minutes into our show with 30 minutes left. We are about to head into a quick commercial break, but don't go anywhere. We have lots of fun segments, including one on the Facebook, Instagram settlement, Onam, and so much more. Don't go anywhere. This is 104.9 FM Fun Asia Radio.
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice. Sathiya!
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: All right, guys. Thank you so much for joining me on our show today from 2 p.m. to 3 p.m. I've been your RJ Rhea. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Don't go anywhere. Lots of fun music and segments that have been to be said. I hope everyone has a great rest of their Sunday, a great week, and I hope everyone enjoyed the hour that we had today, all the music and the segments we did. Thank you and have a great day.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ
6: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
1: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
7: क्लीन
8: चेक
7: विंडोज क्लीन
8: चेक
7: किचन क्लीन
8: चेक
7: एयर डक्ट्स क्लीन
8: वेट एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है
6: बिल्कुल जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dry vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन हाउ मे आई हेल्प यू
10: हेलो मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है
9: फिकर नॉट वी हैव द Perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया
12: ये तारा वो तारा हर तारा
5: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

नॉनस्टॉप 90s का आगाज किया हमने कोयला फिल्म के इस गाने के साथ. स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. I will be with you till 6 p.m. It is 12 minutes past 3 on this 30th of August 2026 and it's a Sunday afternoon. It is steaming hot, but at least still not as bad as it has been the past couple of weeks. Non-stop 90s mein aaj bari hai 1997 ki. So aaj hum aapko sunwayenge top 10 97 blockbuster filmon ke gaane and I hope that you will enjoy my selection. So aaiye chalte hain us film ke gaane ki taraf jo ke paidan par pehle number par thi, as in the top highest grossing film of 1997.

संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, बॉर्डर फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप. दिस फिल्म केम आउट बैक इन 1997 एंड डिड ग्रेट ऑन द बॉक्स ऑफिस. और अब तो खैर संदेश वगैरह नहीं आते, अब तो ईमेल और टेक्स्ट ही आते हैं, और वो भी आ जाएं तो बड़ी बात है. 16 मिनट्स पास्ट 3, यू आर लिसनिंग टू नॉनस्टॉप 90s. बॉर्डर फिल्म वाज ए मल्टी स्टारर. एवरीवन फ्रॉम सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इसार, सुदेश बेरी और कुलभूषण कारबंदा सभी तो थे इस फिल्म में. एंड दिस मूवी वॉज एन एपिक वॉर फिल्म. इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1971 में, दैट इज व्हाट द फोकस वाज फॉर दिस फिल्म. इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले अलग अलग अवार्ड फंक्शंस में. आपको तो पता ही है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं. दिस मूवी एक्चुअली रिसीव्ड 3 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, और इसको 11 नॉमिनेशंस मिली 43rd फिल्म फेयर अवार्ड्स में, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर वगैरह वगैरह. ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं नॉनस्टॉप 90s के सेगमेंट को और लेकर चलते हैं आपको 1997 की सेकंड हाईएस्ट फिल्म के गाने की तरफ. लेट्स सी इफ यू कैन गेस. म्यूजिक सुनेंगे तो फौरन ही समझ जाएंगे कौन सा गाना, कौन सी फिल्म. हियर इज अ टाइटल ट्रैक.

दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. आई थिंक दैट्स पुटिंग इट लाइटली, राइट? आई थिंक दिल के बारे में जो जो कहा जाए कम है, पर यस, डेफिनेटली दिल तो पागल है. और जब दिल पागल होता है तो आई थिंक ये दिमाग भी काम करना छोड़ देता है, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ लव. यश चोपड़ा की प्रोड्यूस की हुई ये फिल्म सुपर डुपर टूपर हिट थी, एंड इट हैड एवरीवन दैट यू लव. शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर एज वेल एज अक्षय कुमार. इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस मिले थे 43rd फिल्मफेयर अवार्ड में, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एंड इट एक्चुअली वॉन द लीडिंग 8 अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. होर की चाहिदा है कि नहीं? ऑलराइट, यू आर लिसनिंग टू नॉनस्टॉप 90s. आज फोकस कर रहे हैं हम 1997 में रिलीज हुई हिट फिल्मों की. दिस ऑफ कोर्स वाज अ रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म. एक से बढ़कर एक था गाना इस फिल्म का, बट यू नो व्हाट, हमारी नेक्स्ट फिल्म के गाने भी नॉट बैड एट ऑल. हियर यू गो, दिस वन इज फ्रॉम द 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म इश्क.

टेकन फ्रॉम द मसाला फिल्म इश्क. इंदिरा कुमार ने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म, जिसमें थे आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला एज वेल एज काजोल, एंड ऑफ कोर्स कॉमेडी थी जॉनी लीवर की. नाउ दिस मूवी केम आउट बैक ऑन 28th of November 1997, एंड दोज ऑफ यू हु नो मी नो दैट इट वाज माय बर्थडे, सो ऑफ कोर्स नाउ आई एम गोइंग टू ऑलवेज रिमेंबर दैट. नाउ अगर आप सोच रहे होंगे कि ओके 28th नवंबर की बर्थडे होती है, अभी तो आई नहीं, पर 1997 में तो आई थी ना, और तब आप मुझे नहीं जानते थे तो आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, एंड दैट्स ओके. बट आई एम वेरी काइंड हार्टेड, सो इफ यू मिस्ड माय बर्थडे ऑल दीज अदर इयर्स एंड यू थिंक यू शुड मेक अप फॉर इट, एंड आप अभी मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं 1997 वाला, दैट्स ओके. मतलब किसी भी साल का, एनी ईयर दैट यू मिस्ड माय बर्थडे, यू आर मोर देन वेलकम. आई एम लाइक वेरी ओपन माइंडेड दैट वे, यू नो. मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, आई एम वेरी वेरी काइंड हार्टेड. ऑलराइट, दैट्स इट, लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का गाना. परदेस फिल्म का ये गाना आई नो एवरीवन लव्स, एंड आई नो यू आर गोना लाइक इट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. आई एम योर होस्ट, अमरीन हसनात.

0: दो दिल मिल रहे हैं 1997 की ये म्यूजिकल रोमांटिक सी फिल्म सुभाष घई साहब ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी. इसमें थे शाहरुख खान और उनके साथ थी महिमा चौधरी. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट अमरीश पुरी प्लेड इन दिस मूवी. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहां अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं हो तो भी दे विल टेक केयर ऑफ यू. इन फैक्ट दे हैव एन अफोर्डेबल प्रोग्राम दैट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट, जो कि इट्स ओनली $85 अ month. So go ahead, give them a call, find out more about it, 214-666-6259. They also have some great deals for self-pay, at least 20% savings offer karte hain. And this membership includes everything from regular visits as well as follow-ups.
1: Shravan hame jodta hai Bhagwan se, Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
2: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
3: अरे वो केक आया क्या?
4: डीजे कौन हैंडल करेगा?
3: डेकोर वाले को कॉल किया.
4: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
5: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
4: ऑसम इवेंट्स?
5: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
4: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
5: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
2: कॉल नाउ एट 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
6: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
7: We need to talk.
8: अब क्या हुआ?
7: Nothing. It's not you.
8: Oh no.
7: It's the distance.
8: Distance? We live 10 minutes apart.
7: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: Beta, 95% aaye?
10: Haan, mummy.
9: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
11: मेरा?
9: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
14: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

मिस्ट्री थ्रिलर गुप्त से लिया गया था ये गाना, जिसमें मेन रोल अदा किया था बॉबी देओल, मनीषा कुराला और काजोल ने. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. I'm your host Amreen Hasnat and I'll be with you till 6 PM और ये है हमारा पहला सेगमेंट Non-Stop 90s, जिसमें आज शोकेस कर रहे हैं हम 1997 में रिलीज होने वाली हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने. गुप्त happens to be one of them and at the 43rd Filmfare Award it received 8 nominations and actually received 3 awards including बेस्ट विलन. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग फिल्म थी ये. पर्सनली आई प्रेफर थ्रिलर्स ओवर लव स्टोरीज, बट देन अगेन दैट इज जस्ट मी. नाउ ये गाना जो आपने सुना उदित नारायण की आवाज में, बॉबी देओल वॉज डांसिंग अवे एट अ पार्टी, इफ यू रिमेंबर द मूवी. स्पीकिंग अ पार्टी, इफ यू आर प्लानिंग टू होस्ट वन, लेट वेनेसा इवेंट्स हेल्प यू आउट बिकॉज दे आर अ फुल सर्विस वेडिंग प्लानिंग कंपनी एंड दे स्पेशलाइज इन केटरिंग. एक्सक्लूसिव केटरिंग देते हैं ये आपको बसेरा ग्रांड की तरफ से. सो इफ यू आर नीडिंग हेल्प विद योर इवेंट, चाहे कोई छोटा इवेंट है या बड़ा इवेंट है, दे विल टेक केयर ऑफ इट ऑल. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770 एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेगमेंट नॉनस्टॉप 90s.

रवीना टंडन पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म जिद्दी से लिया गया था, विच वॉज स्टारिंग सनी देओल. एंड ऑफ कोर्स सनी देओल हो और फिल्म में एक्शन ना हो, ये कैसे पॉसिबल है. सो रवीना टंडन के साथ थे सनी देओल एज वेल एज अनुपम खेर एंड राज बब्बर इन दिस 1997 फिल्म. इनफैक्ट ये ओरिजिनल कहानी नहीं थी बल्कि एक तमिल फिल्म को हिंदी में बनाया गया था. तमिल फिल्म का नाम था धर्मा एंड व्हेन इट वाज रीमेड इन बॉलीवुड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट and did great at the box office. Non-stop 90s mein aaj suna rahe hain hum aapko 1997 ki hit filmon ke gaane.

उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में सुन रहे थे तू मेरा हीरो नंबर वन एंड दैट इज अ टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म। जब डेविड धवन ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें ख्याल आया कि गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी से बेहतर कोई नहीं होगी एंड ही वॉज राइट विच इज वाई This movie became an instant hit in 1997. Interesting बात ये है कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बावर्ची नाम से इसी कहानी पर फिल्म बनाई थी 1972 में. So this is kind of like an adaptation of that film. However, here is another kicker. वो फिल्म भी एक बंगाली मूवी की रीमेक थी. द बांग्ला मूवी केम आउट इन 1967 एंड इट वाज कॉल्ड गल्प होलो सत्यि, यानी के कहानी एक सच्ची. सो पर इस फिल्म में उसका नाम उन्होंने हीरो नंबर वन रख दिया. नया जमाना नया स्टाइल, दैट्स व्हाट हैपेंड. सो करिश्मा कपूर गोविंदा पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना. होप यू एंजॉयड इट. यू आर लिसनिंग टू नॉन स्टॉप 90s एंड टुडे वी आर शोकेसिंग songs from movies which came out in 1997.

प्यार करते करते अनिल कपूर, उर्मिला मटोडकर और श्रीदेवी पर पिक्चराइज किया जाने वाला ये गाना 1997 की 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म जुदाई से लिया गया था। आवाजें तो आपने पहचान ली होंगी, दैट वाज अलका याग्निक एंड कविता कृष्णमूर्ति। होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग। एंड नाउ, इस फिल्म में दो हीरोइन थी तो आमतौर पर लव ट्राइंगल का ख्याल आता है, पर ऐसा नहीं है। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें एक बीवी जो कि काफी ग्रीडी है, एज इन ग्रीडी एज इन उसको पैसों का लालच है, उसे अपने हस्बैंड से मोहब्बत तो है लेकिन साथ साथ उसकी ख्वाहिशात हैं बेशुमार, तो वो एक दूसरी औरत को अपने हस्बैंड को बेच देती है एंड बाद में शी रिग्रेट्स इट ऑफ कोर्स। नाउ यू नो व्हेन द फैक्ट दैट शी वाज हैविंग प्रॉब्लम्स, नाउ माय स्ट्रेटजी वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर मैंने उस दूसरी औरत का सारा पैसा करोड़ों की दौलत ले ली, देन आई वुड हैव जस्ट गॉटन रिड ऑफ द सेकंड वुमन, यू नो, देन आई वुडन्ट हैव टू वरी अबाउट इट। बट यू नो दे हैड, इट्स अ मूवी, दे हैड कॉन्फ्लिक्ट, यारा yada yada. Anyway, the film did great at the box office. Takriban 6 crore lage the ise banane mein, but it recovered everything and then some. 28 crore is what it made at the box office. All right, ab chalte hain agle gaane ki taraf. Here you go, enjoy.

0: देखने वाला।
1: शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप उदित नारायण की आवाज में। और गो ये फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं थी, इट स्टिल वॉज द 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1997। राकेश रोशन साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इसमें शाहरुख खान के साथ थी माधुरी दीक्षित और विलन थे अमरीश पुरी। ऑफ कोर्स जॉनी लिवर केप्ट एवरीवन एंटरटेन्ड एंड केप्ट देम लाफिंग। इट इज 54 मिनट्स पास्ट 3 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात, शोकेसिंग हिट मूवीज ऑफ 1997।

डेविड धवन की बनाई हुई एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का गाना सुन रहे थे आप. दिस वाज टाइटल दीवाना मस्ताना. कॉमेडी हो, डेविड धवन हो और गोविंदा हो, दैट इज अ डेफिनेटली हिट मूवी. जॉनी लिवर, अनुपम खेर और शक्ति कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा थे, एज वेल एज सईद जाफरी एंड कादर खान. सो अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट इन दिस मूवी फॉर यू, विच ऑफ कोर्स वाज नॉट अ सुपर डुपर हिट, बट यू नो विद इन द टॉप 10 मूवीज ऑफ 1997. इनफैक्ट ये इतनी लोगों ने पसंद की के बाद में इसकी एक तेलुगु वर्जन भी बनाया गया. ऑलराइट, अब लेकर चलते हैं आपको आखिरी गाने की तरफ. दिस वन इज फ्रॉम अनदर हिट मूवीज ऑफ 1997. जुड़वा सलमान खान, करिश्मा कपूर.

तुझे दोबारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा खड़ी खड़ी क्या सोच रही है।

0: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं. पहले हमारा सेगमेंट था नॉन स्टॉप 90s, जिसमें हमने आपको 1997 के हिट गाने सुनवाए. और अब बारी है शब्द सेगमेंट की. शब्द सेगमेंट में सेलेक्ट करते हैं हम एक वर्ड, एक लफ्ज, एक शब्द, और उसी से रिलेटेड आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. शुरुआत करते हैं हम पुराने गानों से और ऐसा ऐसा आगे की तरफ बढ़ते हैं. एज इन अप अंटिल टुडे. नाउ वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ फर्स्ट सॉन्ग, आस्किंग यू टू गेस के आज का वर्ड क्या है. एंड सही जवाब देने पर ऑफकोर्स इनाम के हकदार बनते हैं आप. आज का इनाम है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, दैट इज चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी गैसेस कर लेते हैं, तो सुनिए 1967 की फिल्म का ये गाना और गेस करने की कोशिश कीजिए कि आज का वर्ड क्या है. फिर कॉल कीजिए 972-235-5555. दैट्स 972-235-5555.
1: ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे

0: कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा
1: आ जा रे आ जरा। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना जो आशा पारिक और जॉय मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था फ्रॉम द फिल्म लव इन टोक्यो। और अब 70s के गाने की तरफ लेकर चलते हैं क्योंकि ये पहले गाने से तो कोई गेस नहीं कर पाया, बट आई एम 100% श्योर कि जब आप ये अगला गाना सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज़ क्या है।

किस्मत है। तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

ए भाई, जरा देख के चलो। मन्ना डे जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द फिल्म मेरा नाम जोकर, जो कि राज कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया था। शहताज जी, मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल सही गेस किया आपने, आज का वर्ड है जरा। सो जितने भी गाने आज हम आपको सुनवाएंगे, द वर्ड विल बी जरा। एंड सिंस वी डिड 60s एंड 70s, अब बारी है 80s की, तो 80s का गाना आपको सुनवाते हैं। ताज वन द फूड क्रेडिट फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन।

आशा भोसले जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत सा गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म अगर तुम ना होते। ये गाना रेखा और राज बब्बर पर पिक्चराइज किया गया था। एंड आई नो हमने अनाउंस किया हमारा विनर विच वॉज शाहताज जी, जिन्होंने विन किया चंडीगढ़ बाइट से $10 का फूड क्रेडिट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट मंडे थ्रू फ्राइडे चंडीगढ़ बाइट्स में डेली थाली स्पेशल होती है एंड थाली में रोज वो नई डिशेस ऐड करते हैं, सो इट्स नॉट द सेम डिश दैट यू गेट टू एंजॉय फॉर लंच एवरी डे। तो अगर आप मंडे थ्रू फ्राइडे रोज भी जाएंगे तो एवरी डे द थाली इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। नाउ दे आर लोकेटेड राइट ऑफ मैकडेमिड ड्राइव इन एलन। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू शब्द सेगमेंट, लेकर चलते हैं आपको अगले गाने की तरफ, 80s से अब 90s।

इस वीडियो को देखकर मुझे इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि काजल ने इतने छोटे से ड्रेस में इस गाने की वीडियो कैसे उन्होंने प्रोड्यूस की होगी, कितनी ठंड लग रही होगी उनको। मुझे वैसे ही बहुत सर्दी लगती है, और यू नो उस बर्फबारी के अंदर, नॉट बर्फबारी तो खैर नहीं हो रही थी, पर बर्फ तो जमी हुई थी, एंड शी इज वेयरिंग अ लिटिल ड्रेस एंड जरा सा झूम रही है, पूरा पूरा झूम रही है। आई होप यू एंजॉयड दैट सॉन्ग टेकन फ्रॉम द फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज थी आशा भोसले और अभिजीत की, गाना शाहरुख खान और काजल पर पिक्चराइज किया गया था। इट्स 18 मिनट्स फास्ट 4 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात, आई बी विद यू टिल 6 PM। ये है शब्द का सेगमेंट और आज का वर्ड है जरा, इसलिए जितने भी गाने आज आप सुनेंगे, दे आर गोना हैव दैट वर्ड इन इट।

I'll be honest, ये गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना, but I really liked it. आफ्ताब शिवदासानी और बिपाशा बासु पर पिक्चराइज किया गया ये गाना, फिल्म फुटपाथ से लिया गया था और आवाज थी उदित नारायण की. 25 minutes past 4, it is actually pretty hot outside, 98 degrees Fahrenheit here in the McKinney area. Today's high 99, so I guess हम उस गर्म से थोड़ा कम हो गया है अब, एक डिग्री, not that much of a difference. Today's low 79, tomorrow it's going to be a little cooler. When I say a little, I mean 2 degrees, 97 for a high, 78 for a low. इस बार गर्मी काफी कड़ाके की पड़ी है, and you know what, ये अगला गाना भी काफी कड़ाकेदार है, सुनिए तो.

फ्रॉम द फिल्म दम. इस गाने में आवाज थी सुखविंदर सिंह और नेहा कक्कर की बहन सोनू कक्कर की. यू नो आई डिडंट नो एट द टाइम दैट दिस वाज सोनू कक्कर. एनीवे लेट्स कंटिन्यू दिस सेगमेंट. आइए सुनते हैं ये अगला गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म रन, जो कि अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला पर पिक्चराइज किया गया है.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Floors clean.
3: Check.
2: Windows clean.
3: Check.
2: Kitchen clean.
3: Check.
2: Air ducts clean.
3: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
4: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar le rahe hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: Not some or price?
1: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
12: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
11: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज
2: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म लकी से लिया गया था। आवाज है सोनू निगम की, जो बहुत जल्द होंगे डैलस में टू एंटरटेन ऑल ऑफ अस। यू आर ट्यून्ड इनटू दिल से ऑन 104.9 एफएम। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात। आई बी विथ यू टिल 6 पीएम। इट इज 38 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 30th ऑफ अगस्त 2026। कैन यू बिलीव इट, ऑलरेडी अगस्त का महीना खत्म हो गया। अभी तो शुरू हुआ था, ऑलरेडी खत्म भी हो गया। वक्त ऐसे पर लगाकर उड़ रहा है जैसे कि कोई परिंदा। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलर्स। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट तनिष्क राइट नाउ इज दे आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। वेल, आप कहेंगे इसमें मेरा क्या फायदा? वेल, फायदा ये है कि यू गेट 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट। सो पुराना सोना या सोने की ज्वेलरी रखकर क्या फायदा? गो अहेड एंड एक्सचेंज इट, गेट मोर आउट ऑफ इट। सो कम सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एंड यू नो वेयर देयर शोरूम इज, राइट? इट्स इन फ्रिस्को। राइट नाउ आप सुन रहे हैं शब्द का सेगमेंट, जिसमें हमारे आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लव्स है जरा। सो जितने भी गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, दे हैव दैट वर्ड इन इट। शुरुआत की थी पुराने गानों से और आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ।

अलीशा चनोई की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म करम. प्रियंका चोपड़ा पर पिक्चराइज किया गया था. एंड लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई नो यू गाइस विल लाइक इट टू. दिस इज जन्नत. इमरान हाशमी पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना.

जरा जरा टच मी कटरीना कैफ सैफ अली खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म रेस से लिया गया था. इट्स 48 मिनट्स पास्ट 4. यू आर लिसनिंग टू शब्द सेगमेंट जिसमें आज का वर्ड है जरा.

जरा दिल को थाम लो, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग। शाहरुख खान और लारा दत्ता पर पिक्चराइज किया गया ये गाना, फिल्म डॉन से लिया गया था। एंड हियर इज वन रिक्वेस्टेड बाय मिलिंद, टेकन फ्रॉम द फिल्म तलाश, लव इट।

झीले जरा विशाल दादलानी की आवाज में ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था. आई लव दैट सॉन्ग, आई थिंक इट्स अमेजिंग. थैंक यू मिलन फॉर रिक्वेस्टिंग इट. एंड हियर इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ आवर शब्द सेगमेंट टुडे.

0: लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक. व्हेन वी कम बैक, दिल से वो कंटिन्यू.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texas फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
8: एक और लड्डू ले लो.
9: थोड़ी और बिरयानी.
8: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा.
10: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
11: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
11: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.
14: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
15: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
19: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
18: And pistachio lamb chops,
19: full on flavor ka fusion.
20: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
21: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

लता मंगेशकर और अभिजीत की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो नीलम और सैफ अली खान पर पिक्चराइज किया गया था। जी हाँ, आज बारी है खान स्पेशल की और फीचर कर रहे हैं हम सैफ अली खान के फिल्मी गाने। आई बी प्लेइंग सम ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग्स एंड आई होप यू विल एंजॉय माय सिलेक्शन। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमार ख्वाजा। जी हाँ, वही जो कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट्स में आपकी मदद कर सकते हैं। इट्स नॉट ईजी डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज बिकॉज उनका काम क्या है, पैसे बचाना। लेकिन अटर्नी ओमार ख्वाजा वो मेक श्योर दैट यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व। इन फैक्ट उनकी कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त है। जस्ट कॉल देम 469-300-5046 एंड इफ यू डू साइन अप विद देम यू डोंट इवन हैव टू पे एनीथिंग अनलेस यू विन। सो गो अहेड, सेव देयर नंबर। आई होप ऐसा कुछ हो ना आपके साथ, लेकिन गॉड फॉरबिड समथिंग डज हैपन, यू शुड हैव द नंबर हैंडी, राइट? 469-300-5046। जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया फिल्म परंपरा से लिया गया था एंड वो एक्चुअली सैफ अली खान की पहली मूवी थी, लेकिन उसमें वो हीरो नहीं थे, ही वॉज अ साइड एक्टर, एज इन साइड हीरो कह लें। लेकिन जिस फिल्म में वो एक्चुअली हीरो हीरो थे, दैट वॉज आशिक आवारा। सो क्यों ना हो जाए उस फिल्म का एक गाना।

आशिक आवारा का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप उदित नारायण की आवाज में। इस फिल्म में उनके साथ थी ममता कुलकर्णी एंड गेस व्हाट, ही एक्चुअली रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू फॉर दिस फिल्म व्हिच केम आउट इन 1993। इनफैक्ट 1993 में एक और भी फिल्म थी जिसमें इन्होंने काम किया, जिसका ये गाना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। इस गाने में उनके साथ हैं काजोल, टेकन फ्रॉम द फिल्म ये दिल लगी।

सैफ अली खान और काजल पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म ये दिल लगी से लिया गया था। आवाजें थी अलका याग्निक, एक्चुअली नॉट अलका याग्निक, लता मंगेशकर एंड कुमार सानू की। इट इज 14 मिनट्स पास्ट 5 ऑन दिस 30th of August 2026। मैंने सोचा था कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, एज इन शाम होगी तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, पर मजाल है मौसम जरा सा भी बदले। इट्स स्टिल 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। क्या करूं मैं, कैसे करूं इस मौसम को ठंडा? नहीं हो रहा, किसी को कहना पड़ेगा, पैगाम भेजवाना पड़ेगा। ये और बात है कि हमारा स्टूडियो तो बिल्कुल अलास्का की तरह है। सो इन द स्टूडियो इट्स कोल्डर देन व्हाट इट नीड्स टू बी एंड आउटसाइड इट्स हॉटर देन व्हाट इट नीड्स टू बी। द करंट टेंपरेचर the McKinney area 98 degrees Fahrenheit, today's high 99, low of 79 degrees Fahrenheit, aur kal ka mausam it's going to be pretty much the same, 97 for a high, 79 for a low. You're listening to the Khan special, jisme aaj special Khan hai Saif Ali Khan.

जरा जरा सुन रहे थे आप ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, टेकन फ्रॉम द फिल्म मैं खिलाड़ी तू ए अनाड़ी, जिसमें सैफ अली खान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। You're listening to Dil Se on 104.9 FM. This is the Khan Special, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सैफ अली खान की हिट फिल्मों के गाने। Here's one from the movie Hamesha. Double role था I believe इसमें सैफ अली खान का, राजा एंड राजू दोनों ही थे सैफ अली खान।

पीला सूट, वेरी फन सॉन्ग, काजल और सैफ अली खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना, साधना सरगम और अभिजीत की आवाज में सुन रहे थे आप. दिस मूवी केम आउट आई बिलीव बैक इन 1997. 1998 में भी तीन चार फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो 1999 की फिल्म कच्चे धागे से लिया गया है.

प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, पर कौन सुनता है जहान की। जब प्यार होना होता है हो जाता है, और फिर चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आप प्यार करके ही रहते हैं। यही अलमिया है जिंदगी का। कोई किसी के कहने पर प्यार नहीं करता, और ना ही किसी के कहने पर प्यार करना छोड़ सकता है। प्यार ही क्या अगर किसी के कहने में आ जाएं हम। 25 minutes past 5, you're listening to Dil Se on 104.9 FM. This part of our show brought to you by AG FinTax, and it's one of the fastest growing tax firms in the US, offering all kinds of innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. So you can trust them. Give them a call, 469-9429-888, or you can visit agfintax.com. You're listening to Khan Special on Dil Se, और आज गाने प्ले कर रहे हैं हम सैफ अली खान की हिट फिल्मों के, इंक्लूडिंग दिस वन। रिमेम्बर दिस वन, मल्टी स्टारर हम साथ साथ

0: परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
1: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
2: We need to talk.
3: अब क्या हुआ?
2: Nothing. It's not you.
3: Oh no.
2: It's the distance.
3: Distance? We live 10 minutes apart.
2: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
4: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
5: Ye tara, wo tara, har tara.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
8: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relieve the magic of Kumar Sanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhumiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

जाने मन जाने जा, सुन रहे थे आप सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना जो सैफ अली खान और प्रीति जिंटा पर पिक्चराइज किया गया था। यू लिसनिंग टू द खान स्पेशल, जिसमें आज हम आपको सैफ अली खान के फिल्मी गाने सुनवा रहे हैं। वी आर गोइंग क्रोनोलॉजिकली। ये गाना 2000 में रिलीज हुआ था एज फॉर द फिल्म क्या कहना। अब आइए चलते हैं 2001 की सुपरहिट फिल्म दिल चाहता है कि इस गाने की तरफ, जिसमें सैफ अली खान प्लेड द पार्ट ऑफ समीर एंड ही आल्सो गॉट एन अवार्ड फ्रॉम फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट इन कॉमिक रोल।

सैफ अली खान पर पिक्चराइज किया गाना फिल्म दिल चाहता है से लिया गया था. दैट्स अ फन फन सॉन्ग. आई होप यू एंजॉयड इट. आइए चलते हैं इस अगले गाने की तरफ ना. आई नो इट्स सो फनी दैट आज के शब्द सेगमेंट में इस फिल्म का एक दूसरा गाना प्ले किया गया था एंड नाउ वी आर प्लेइंग अनदर सॉन्ग एंड दिस वन ऑफ कोर्स इज फीचरिंग सैफ अली खान. आई एम रेफरिंग टू फिल्म रहना है तेरे दिल में.

0: प्यार हो गया? प्यार से और कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज्ड।
1: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख।
2: प्यार यश चोपड़ा के गीत है।
3: प्यार, प्यार इज टू चिल।
4: प्यार अभी बताता।

प्रीति जिंटा के साथ हमेशा सैफ अली खान का बड़ा ही एक अच्छा इक्वेशन रहा है एंड द केमिस्ट्री हैज बीन ग्रेट ऑन स्क्रीन एज वेल. इन फैक्ट 2000 में क्या कहना में एक्चुअली सैफ अली खान वाज मोर ऑफ अ विलन इन दैट मूवी, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने जितनी फिल्में की और जिसमें उनके साथ प्रीति जिंटा थी, फिल्म हिट गई, इंक्लूडिंग दिल जाता है. आई मीन शी वॉज नॉट हिज हीरोइन इन दैट मूवी बट शी वॉज देयर. सेम थिंग गोज फॉर द मूवी कल हो ना हो, जिसमें आई मीन शी वॉज अ लीड एंड ही वॉज काइंड ऑफ द हीरो बिकॉज शाहरुख खान भी वहां थे. एनीवे आई थिंक 2000 के बाद सैफ अली खान का करियर रियली रियली took off and he started performing better and getting better movies and being appreciated more for his work. लोग कारगिल का जो गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, इट्स गोइंग टू रिमाइंड यू ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम बॉर्डर, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, बिकॉज इन दैट सॉन्ग दे ऑल्सो शोड डिफरेंट कपल्स एंड सेम वॉज द सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग के इसमें तीन कपल्स दिखाते हैं बट द सॉन्ग इज द सेम और इट डिपिक्ट्स देयर लाइव्स. सैफ अली खान वॉज ऑल्सो इन दिस मूवी. तो आइए फिर सुनते हैं लोक कारगिल फिल्म का ये गाना.

एक हसीना थी. फिल्म पर्सनली मुझे बहुत पसंद थी. आई लाइक थ्रिलर. सो दिस ऑल्सो हैड सैफ अली खान इन अ नेगेटिव रोल और मेन लीड इस फिल्म में थी उर्मिला मातोंडकर. आई होप यू गाइज एंजॉय दैट सॉन्ग. फर्स्ट फिल्म में ज्यादा गाने नहीं थे, दिस वॉज दी ओनली वन, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू प्ले इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू मैंशन दिस मूवी इन दिस खान स्पेशल, जिसमें हम सैफ अली खान के फिल्मों के गाने आपको सुनवा रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया, 2000 के बाद हिज करियर रियली टुक ऑफ एंड देन ही डिड ग्रेट विद द मूवी हम तुम. हम तुम मूवी में उनका रोल था करण कपूर का. इस फिल्म में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एक्टर एंड ही ऑल्सो वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल. पर हम आपको कॉमिकल गाना नहीं बल्कि एक रोमांटिक सा गाना सुनवाने जा रहे हैं फ्रॉम द फिल्म हम तुम.

0: इसी आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत. उम्मीद करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप लोगों ने एंजॉय किया. एंड यू विल जॉइन मी अगेन नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम, यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 एफएम बिटवीन 3 and 6 PM. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ.
1: बड़ा पागल, वरना उसे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
7: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
8: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, catering services, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
9: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
11: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
13: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में सब संभाल लेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
19: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
20: वही आवाज आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
21: तुमसे मिलके दिल का है।
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

यार देखिए, चेहरा दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रेडियो पे तो बस आवाज ही सुन सकते हैं आप, चेहरा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। और आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो शायद हमारी लाइफ में सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए आए हों, लेकिन उनकी एक छोटी सी बात, एक जेस्चर या एक स्माइल हमारी लाइफ में बहुत देर तक रह गई, मतलब मेमोरेबल बन गई। सोचिए, किसी बस में किसी स्ट्रेंजर ने आपको सीट दे दी हो, कभी आप लॉस्ट थे और किसी अननोन पर्सन ने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपकी हेल्प कर दी हो, कभी आप किसी डिफिकल्ट फेज में गुजर रहे थे और एक स्ट्रेंजर ने बस इतना कह दिया हो कि यू नो डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी ओके। आज पता नहीं क्यों वो एक सेंटेंस उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट लग गया। तो आज का सवाल है कि क्या किसी स्ट्रेंजर ने आपकी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है? हो सकता है वो बात उनको पता हो, नहीं पता हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे एक स्ट्रेंजर ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, नंबर है 9722355555।

सही बात है भाई, मैं तो जालिमा नहीं हूँ, मैं तो आरजे सिम भी हूँ फनेशर रेडियो की। और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के बारे में, उनकी लाए हुए हमारे लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी लाइफ में बड़े मोमेंट्स तो याद रखते ही हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन, फर्स्ट जॉब, मैरिज एनिवर्सरीज, बर्थडेज, लेकिन कभी कभी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर का छोटा सा जेस्चर भी मेमोरी बन जाता है और इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ कि आप एक कॉफ़ी लेने गए थे और लाइन में आपके पीछे खड़े पर्सन ने कहा कि चलो आप पहले ले लो, आप किसी सिर्फ एक कॉफ़ी का ऑर्डर है, छोटी बात है। लेकिन अगर आप उस दिन ऑलरेडी लेट हो रहे थे, मतलब सुबह से जो भी बुरा हो सकता था वो सब अगर हो रहा था आपकी लाइफ में, तब वो स्ट्रेंजर आपका इंटायर मॉर्निंग बेटर कर गया और आपको याद रह गया। या फिर एयरपोर्ट पे आपका लगेज हैवी था और किसी स्ट्रेंजर ने बिना बोले बैग उठा लिया, आपकी हेल्प कर दी। या पार्किंग लॉट में आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और एक अननोन पर्सन ने 10 मिनट तक रुककर आपकी हेल्प की और आपको एक सलूशन दिया। आप अक्सर सोचते हैं कि किसी न किसी के लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बट समटाइम्स आपकी एक छोटी सी काइंडनेस किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज है जहाँ पे स्ट्रेंजर्स ने आपकी मदद की या फिर आप किसी के लिए वो स्ट्रेंजर बने, तो डू लेट अस नो। आप कॉल करके हमें बता सकते हैं एट 972-235-5555। और जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो हमारे स्वीट सफ़ी के लिए।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: जीनी हुकम मेरी आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
3: मिराज लाउंज चलिए मेरी आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
3: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
2: और एंटरटेनमेंट
3: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
2: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
3: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
0: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Floors clean.
6: Check.
5: Windows clean.
6: Check.
5: Kitchen clean.
6: Check.
5: Air ducts clean.
6: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
7: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
9: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
8: नहीं
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है
8: नहीं
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
8: वो भी नहीं
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
0: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
12: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज हम बातें कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के बारे में और अगर उन्होंने आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया हो तो उन स्टोरीज के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमें सुमित का फोन आया और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बैक इन 2013-14 और उस टाइम जो है वो नए नए आए थे यूएस में विद हिज वाइफ और सब, मतलब आपको तो पता ही है डिफिकल्टीज की, जब हम नए आए तो सबसे बड़ी चैलेंज जो होता है वो होता है कि लर्नर्स लाइसेंस लेना, गाड़ी नहीं होती आपके पास, अपने खरीद भी ली तो आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आप प्रॉपर यू नो गाड़ी लाइसेंस वगैरह आपको मिल नहीं जाए। तो इनिशियल डेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ शिफ्टिंग टू यूएस वो एक्सपीरियंस कर रहे थे और उस वक्त वो खड़े थे रोड के पास, वेट कर रहे थे कि कहीं से कोई गाड़ी मिल जाए, बस मिल जाए ताकि वो चले जाएं, और परेशान से ऑफकोर्स दिख रहे थे। और सामने से एक ब्लैक एसयूवी जो है आती है, रुकती है उनके पास और बोलती है कि आपको कहीं जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूं। और क्योंकि ये जो देसी देसी कनेक्ट होता है ना हमारा कि यार अभी तो देसी है तो पक्का यू नो मदद कर देंगे, और तो फिर वो बैठते हैं, वो जाते हैं उनके साथ और उनको पता चलता है कि वो जो स्ट्रेंजर हैं वो वॉलग्रीन्स निकले थे, उनका एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था जिनके लिए वो फार्मेसी के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेने जा रहे थे। तो इस अर्जेंसी में भी सो काइंड ऑफ हेम कि उन्होंने जो है सुमित और उनकी वाइफ की मदद की। और आप डिटेल्स देखो कि उनको कितने अच्छे से याद है कि इस ब्लैक एसयूवी थी और वो कहाँ जा रहे थे, बेबी हुआ था। सो दैट इज वॉट वी रिमेंबर अबाउट दिस स्ट्रेंजर। और ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं थे, वो डीजे मूडी थे जो उनको बाद बाद में पता चला है। एंड इट इज सो गुड दैट यू नो इट इज सो एक्साइटिंग क्योंकि फन एशिया से काफी जुड़े हुए रहते हैं डीजे मूडी और बहुत सारे इवेंट्स में भी आपको मिल जाएंगे। और सुमित की ये स्टोरी तो मैं भी उनके साथ पर्सनली शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज है किसी स्ट्रेंजर्स के साथ, या अगर आपने किसी के लाइफ में स्ट्रेंजर बन के काइंडनेस दिखाई है, तो डू लेट अस नो। आप कॉल कर सकते हैं 972-235-5555।

आप सुन रहे हैं आरजे सिमी को और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के बारे में। कभी कभी स्ट्रेंजर ना जरूरी नहीं है कि हमें फिजिकली ही हेल्प करे, जैसे सामान उठा दिया या फिर कहीं पे लिफ्ट दे दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया हो, एक लाइन बोल दिया हो और हमारे दिमाग में वो स्टक हो गया लाइक फॉर द लाइफ टाइम। मे बी यू आर नर्वस बिफोर एन इंटरव्यू और किसी ने कहा कि यार बस अपना बेस्ट दे देना, रिजल्ट का स्ट्रेस मत लेना। मे बी आप हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए किसी कैफे में बैठे थे और वेटर ने कैजुअली कहा, सर मैम टेक केयर, बेटर डेज आर कमिंग। उन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या कहा, किसको कहा, लेकिन आप जिन्होंने सुना है ये और जिनको जरूरत थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो उनको जरूर, आपको जरूर याद रहा होगा। बिकॉज समटाइम्स राइट वर्ड्स राइट पर्सन से नहीं, राइट टाइम पर मिलना चाहिए। और स्ट्रेंजर होने की एक इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी हम स्ट्रेंजर के सामने वो बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो अपने लोगों के सामने भी नहीं कर पाते। एक स्ट्रेंजर के पास हमारी हिस्ट्री नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, बस एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन होता है। तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रेंजर ने आपको कभी एक ऐसी एडवाइस दी है जो आपने जेन्युइनली अपनी लाइफ में फॉलो करी है। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 9722355555।

आज हम बात कर रहे थे स्ट्रेंजर्स के बारे में और वक्त हो गया है कि इस सेगमेंट को यहीं पे क्लोज किया जाए। वैसे आज की बात से एक चीज तो समझ आती है कि हम सब किसी न किसी की स्टोरी में स्ट्रेंजर हैं। आपको पता नहीं है, बस आपका एक कॉम्प्लीमेंट किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, आपका एक स्माइल किसी के बैड डे को बेटर कर सकता है, और आपकी एक कोई छोटी सी मदद किसी के स्ट्रेसफुल मोमेंट को ईजी बना सकती है। मे बी किसी को याद हो कि आपने उन्हें फर्स्ट डे ऑफिस में लंच के लिए इन्वाइट किया था, मे बी वो मोमेंट जो है आपको भी याद ना हो, बट उन्हें है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करने की, तो जस्ट डू इट, क्योंकि काइंडनेस ना इंट्रोडक्शन का इंतजार नहीं करती। और हो सकता है कि आप किसी के लाइफ के वो स्ट्रेंजर बन जाएं जिसके बारे में वो सालों बाद भी कहे अपने डिस्कशंस में और अपने दोस्तों में, फैमिली के बीच, कि आई डोंट रिमेंबर दैट पर्सन, मतलब द नेम ऑफ द पर्सन, बट आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड फॉर मी। और आपका चेहरा उनके लिए जो है हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेगमेंट। और कुछ सॉन्ग्स और ब्रेक के पास वापस आते हैं और बहुत सारा मस्ती धमाल अभी बाकी है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: वी नीड टू टॉक।
7: अब क्या हुआ?
6: नथिंग, इट्स नॉट यू।
7: ओह नो,
6: इट्स द डिस्टेंस।
7: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
8: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी। वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूँगी।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
6: Wait, itna sab aur price?
0: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega. ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
11: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
10: And pistachio lamb chops,
11: full on flavor ka fusion.
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.